0: जो भी प्रतियोगी परीक्षा की विशेष तौर से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी प्रेरणा आपकी बातों से मिलेगी। सर आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में थे अनुमंडल पदाधिकारी और इनसे हम बातचीत कर रहे थे उनकी जीवन यात्रा के बारे में। इनकी यह यात्रा यह संदेश देती है कि दृढ़ निश्चय, निरंतर परिश्रम और स्पष्ट लक्ष्य के साथ कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। शिक्षा से लेकर प्रशासनिक सेवा तक का अनुभव निश्चय ही युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसके अंतर्गत आज आप मिल रहे थे SDM कुमार रजत से और बातें हो रही थी सिंधु मिश्रा से। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आपकी पसंद थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम आपकी पसंद। इसके पहले ये संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चलिए ये पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद पर, कुदरत फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार की है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। और हमारे ये अगले श्रोता हैं पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। लीजिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। अब आइए हम आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म दर्द से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चेपाकला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर, जीतेश, आदर्श, प्रभात और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, तेनूघाट बोकारो से भगवान प्रसाद ठाकुर और पूरे परिवार के सदस्यगण। आप सभी हैं चेपाकला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर और तिलेश्वरी भरत ठाकुर। और हमारे ये अगले श्रोता हैं बड़ोदरा गुजरात से मौलिक पाटिल और उनके मम्मी पापा, इंदौर से प्रांजलि त्रिशा और उनके मम्मी पापा और बेंगलोर से श्रेयाश्री सुनीता और उनके सभी साथीगण। लीजिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए फिल्म दर्द से।

श्रोताओं, आपके पसंद कार्यक्रम का अगला गीत आप ही के पसंद पर। हमारे सुनने वाले श्रोता हैं सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन सरफुद्दीन, कुमारी वली और कुमारी डब्लू, जेल रोड मथुरा से वसीमा आसमा, अक्रम आसमा और उल्ला आसमा बेलदार। हमारे ही अगले श्रोता हैं मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। आप सभी हैं जातू का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, नाज परवीन और चांदनी नाज। आप सबों ने सुनना चाहा है ये प्यारा सनगमा नौजवान फिल्म से।

श्रोताओं, अगला गीत आपने सुनना चाहा है फिल्म चिराग से। आवाज लता मंगेशकर की है। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओम नंद केसरी, धनानंद और विनोद केसरी। आप सभी हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलवेंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। आप सभी श्रोता हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। लीजिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा नगमा सुनिए।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आप ही की पसंद पर आपने सुनना चाहा है वो कौन थी। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनना चाहा था रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। आदर्श नगर मलरोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आपके पसंद कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आज आपके साथ हैं आपकी दो सखियां सुभाषिनी और शिल्पी।

0: नमस्कार सखियों, एक खूबसूरत दिन और अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ हाजिर है आपके सखी सुभाषिनी
1: और साथ में आज मैं भी हूँ शिल्पी। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। नमस्कार
0: बहनों, गर्मी का दिन है लेकिन बीच बीच में होने वाली बारिश मौसम को सुहाना बना देती है, लेकिन सेहत के नजरिए से देखें तो तपती धूप और फिर अचानक तापमान का गिर जाना ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है।
1: हाँ सुभाषिनी, और जब तक बारिश होती है तब तक तो ठीक लगता है, लेकिन फिर तेज धूप, बेचैन कर देने वाली गर्मी से हालात खराब हो जाते हैं। और चिलचिलाती धूप में अगर बाहर निकलना पड़े तब समझ में आता है कि भाई तापमान कितना बढ़ गया है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो शिल्पी। और बहनों, हर वर्ष तापमान में ये जो अनायास वृद्धि हो रही है ना, और तापमान में लगातार वृद्धि, यही तो है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आज के समय की गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियां ही इस समस्या की जड़ हैं।
1: हाँ बहनों, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ गर्मी बढ़ने तक ही सीमित नहीं है बहनों, इसके परिणाम दुर्गामी हैं। ग्लेशियर का पिघलना यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों और पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और कितने ही द्वीप हैं जो जलमग्न होने की कागार पर आज हैं, और हम ऐसा पढ़ते हैं और अक्सर देखते भी हैं।
0: और वही मौसम में बदलाव, भीषण तूफान, बाढ़, तो कभी लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा, अब तो मानो कि सामान्य हो गया है। कितने ही पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो हैं वो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। भीषण गर्मी और फैलती बीमारियों के कारण मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, व्यक्ति बीमार हो रहा है।
1: बिल्कुल, और अपनी धरती को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना होगा और उसके लिए प्रयास भी करने होंगे, पर सिर्फ हम या आप अकेले नहीं कर सकते बल्कि सामूहिक प्रयास जरूरी है सखियों।
0: सही कह रही हो सखी, हमें अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा इसके लिए। और अक्षय ऊर्जा में जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे जो स्रोत हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, और साथ ही अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने होंगे ताकि वे वातावरण से कार्बन को सोख सकें।
1: बिल्कुल, साथ ही बिजली की भी हमें बचत करनी चाहिए, ऐसे उपकरणों को प्राथमिकता दें जिसमें बिजली की कम खपत होती है। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों को प्राथमिकता दें, जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इन सब का उपयोग करें। और हमेशा हम अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि अगर कम दूरी तय करनी हो तो क्यों ना हम पैदल चलें, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। और 3 R जो होते हैं ना, उसका पालन करें। और 3 R क्या है? 3 R यानी रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, जैसे कचरा को

0: कम करें। दूसरा आर है रीयूज, यानी पुनः उपयोग। हर चीज फेंकने वाली नहीं होती बहनों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है रीसाइकिल, यानी पुनर्चक्रण। प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी चीजों को रीसाइकिल करें ताकि नया सामान बनाने में कम ऊर्जा खर्च हो।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तुमने कही बहनों। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को जागरूक करना, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों और संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना जरूरी है सभी को, और हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी ये बदलाव संभव हो सकेगा।
0: बिल्कुल, इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर हम धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य भी दे सकते हैं। प्रकृति के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम लालच करें तो हमारे लालच को पूरा करने के लिए तो फिर कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल, और ग्लोबल वार्मिंग मानवता के लिए एक चेतावनी है कि इसके पहले कि बहुत देर हो जाए हमें संभल कर रहना होगा। बहनों, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं और इसे सुधारना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और अब समय आ गया है कि हम कल पर टालना छोड़ दें। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है सुभाष जी, जब गर्मी से हम बेचैन हो जाते हैं तो ठंडी हवा को खोजते हैं कि भाई ऐसी जगह जाए जहां ठंडी हवा बहे और हम उसका आनंद ले पाएं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मैनु एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, और मैं हूँ शिल्पी
3: और मैं हूँ सुभाषिनी। तो बहनों, अब वक्त है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का। और बहनों, हर जो स्त्री होती है ना, उसका अगर विवाह हो जाए तो सबसे बड़ी खुशी उसके लिए तब होती है जब वो पहली बार माँ बनती है।
2: बिल्कुल।
3: और पहली बार माँ बनने का जो सुख होता है ना, वो लाखों करोड़ों जितनी भी उसके अलावा जो खुशियाँ हैं, पैसे दे दो, धन दे दो, उससे भी बहुत बढ़कर होती है। तो प्रथम मातृत्व में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए माँ के लिए, इसी बात पर हम आज आपको भेंट वार्ता सुनाएंगे। विषय हमारा यही है, प्रथम मातृत्व में सावधानियाँ एवं खान पान। और हमारी आज की भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर मुस्कान। तो आइए सुनते हैं भेंट वार्ता।
4: एक नन्ही सी धड़कन, एक नई उम्मीद और एक स्त्री के जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास, वो है माँ बनने का सफर। पहली बार मातृत्व का अनुभव हर महिला के लिए भावनाओं से भरा होता है। मन में खुशी होती है, उत्सुकता भी, और कई बार थोड़ी घबराहट भी। क्योंकि जब एक स्त्री पहली बार माँ बनने वाली होती है तो उसके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आते हैं। उसके खान पान, दिनचर्या, सोच और जिम्मेदारियों में एक नई शुरुआत होती है। इस समय उसे सिर्फ दवाइयों की नहीं बल्कि प्यार, देखभाल और सही जानकारी की जरूरत भी होती है। स्वस्थ भोजन, नियमित जांच, पर्याप्त आराम और परिवार का सहयोग, ये सभी बातें माँ और होने वाले शिशु दोनों के लिए जरूरी हैं। तो आइए आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि प्रथम मातृत्व यानी पहली बार माँ बनने का अनुभव, सावधानियाँ खान पान की, ताकि हर माँ का सफर बने सुरक्षित, स्वस्थ और खुशियों से भरा। कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। आप हमारे साथ हैं डॉक्टर मुस्कान। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार।
5: नमस्कार
4: डॉक्टर मुस्कान। सबसे पहला और अहम सवाल है कि प्रथम मातृत्व के दौरान महिला को किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए?
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल के लिए। पहली बार माँ बनने का अनुभव बहुत खास होता है
4: जी,
5: लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है। मैं लिसनर्स को ये कहना चाहूंगी कि रेगुलर डॉक्टर चेकअप, हेल्दी डाइट और प्रॉपर रेस्ट को प्रायोरिटी दें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन ना लें। स्मोकिंग और अल्कोहल से जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहें। हालांकि वॉकिंग या प्रीनेटल योगा, कोई एक्सरसाइज हल्की फुल्की आप कर सकते हैं, बट ट्रेनर या डॉक्टर से सलाह लिए बिना ना करें। अगर ब्लीडिंग तेज या कोई भी अनयूजुअल सिम्टम आपको लगता है तो मेरे ख्याल से तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे जरूरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव सोच और फैमिली सपोर्ट प्रेगनेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करें।
4: जी, बहुत अच्छी बात। मैम, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन क्यों जरूरी माना गया है, इसके बारे में बताएं।

0: ये हमारी श्रोता सखियों को।
1: हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है मैं कहूंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो खाती है उसका सीधा असर हमें पता है कि बेबी की ग्रोथ पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि डाइट में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि प्रोटीन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, फ्रेश फ्रूट्स हों और ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर शामिल करें। पर्याप्त पानी पिए क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हाइड्रेशन होता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में। हेल्दी खाना सिर्फ बेबी की डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि माँ की वीकनेस और अनीमिया से बचाने के लिए हेल्प करता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कोशिश करें जितना हो सके कि बैलेंस डाइट बनाए रखें, क्योंकि बैलेंस डाइट एक हेल्दी प्रेगनेंसी की बुनियाद होती है।
0: जी बहुत अच्छी। मैम, पहली बार माँ बनने पर स्त्री को अपने दिनचर्या में क्या बदलाव करने चाहिए, ये बड़ा अहम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब लोग प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं तो समझ नहीं पाती हैं कि बदलाव क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर। धन्यवाद। ये सवाल महिलाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो भी पहली बार माँ बन रही हैं या फिर दोबारा से माँ बन रही हैं। पहली प्रेगनेंसी में रूटीन को थोड़ा हेल्दी बनाना जरूरी होता है, और पहली प्रेगनेंसी में ज्यादा पता भी नहीं होता है, तो जैसे कि टाइम पर सोना, बैलेंस डाइट लेना चाहिए और स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम से कम रखें। मैं ये कहना चाहूंगी कि हैवी काम या हैवी वेट ना उठाएं, उसे अवॉइड करें। अगर डॉक्टर अलाउ करता है तो हल्की फुल्की वॉकिंग या योगा भी आप कर सकते हैं
0: जी।
1: और हाँ, हाइड्रेशन और प्रॉपर स्लीप को बहुत इम्पोर्टेंस दें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट और फैमिली का सपोर्ट इस फेज को और कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करता है।
0: जी मैम, गर्भावस्था में फॉलिक एसिड और आयरन का क्या महत्व है?
1: ये बहुत जरूरी टॉपिक उठाया है आपने। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड और आयरन दोनों माँ और बेबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। फॉलिक एसिड बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट में हेल्प करता है और बर्थ डिफेक्ट से भी बचाता है। मैं तो सलाह दूंगी, अगर प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी ऑलरेडी है तो आप फॉलिक एसिड और आयरन जरूर लें, और अगर आप पहले से प्लान कर रहे हैं तो आप पहले से भी फॉलिक एसिड शुरू कर सकते हैं। मैं लिसनर को ये भी सलाह दूंगी कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट जरूर लें और रेगुलर लें। सही न्यूट्रिशन हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। गर्भावस्था में किन किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए ये बताइए, बहुत अहम सवाल है ये।
1: हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि खान पान प्रेगनेंसी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है।
0: जी
1: प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर का ऑयली प्रोसेस्ड फूड या कोई भी बासा खाना नहीं खाना चाहिए। कच्चा या आधा पका हुआ और अनहाइजीनिक चीज़ों से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, तो बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करें। और जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी दिनचर्या में बहुत कॉमन होता है कैफीन, चाय, कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब से आपको प्रेगनेंसी में लिमिट में रहना है, इसे लिमिट करना चाहिए। और मैं लिसनर्स को ये भी कहना चाहूंगी कि फ्रेश और घर का खाना हो, बना हुआ खाना खाएं, बैलेंस्ड खाएं, एंड सबसे बेहतर घर का पका हुआ खाना ही होता है। और किसी भी तरीके का डाइट अगर आप चेंज कर रहे हैं तो जरूर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें।
0: जी, बहुत खूब। इस अवस्था में पर्याप्त आराम और नींद का कितना महत्व होता है?
1: धन्यवाद। ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, सबकी ये नींद सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती
0: जी
1: है,
0: जी
1: बट प्रेगनेंसी में ये और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी को एक्स्ट्रा रेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि माँ और बेबी दोनों के लिए बॉडी कॉन्टिन्यूसली काम कर रही है। प्रॉपर स्लीप से स्ट्रेस कम होता है और एनर्जी भी बनी रहती है पूरे दिन के लिए, और साथ में इससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा कम होती है। मैं लिसनर्स को ये सलाह दूंगी कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, दिन में हल्का रेस्ट लेना भी जरूरी है और फायदेमंद रहता है।
0: जी
1: कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है और

0: कोशिश करें कि शांत, जहाँ लाइट कम हो, उतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहकर नींद लें, क्योंकि नींद और पीसफुल एनवायरनमेंट प्रेगनेंसी में बहुत बहुत हेल्प करता है।
1: बिल्कुल मैम, आखिरी सवाल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताइए।
0: हाँ जी, ये भी एक, मैं बोलूँगी, सबसे ज़रूरी सवाल है, स्पेशली इंडिया में। रेगुलर प्रेगनेंसी चेकअप माँ और बेबी दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन चेकअप से डॉक्टर बेबी की ग्रोथ देखता है, ब्लड प्रेशर देखता है और अनीमिया जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसका ट्रीटमेंट टाइम पर शुरू किया जा सकता है। इसीलिए मैं बोलूंगी कि जितनी भी जांचें आपको डॉक्टर के द्वारा लिखी गई हों, उसे टाइम पर जाके कराएं। मैं सब लिसनर्स को ये भी कहना चाहूंगी कि एंटीनेटल विजिट जरूर करें, उसे इग्नोर ना करें, और रेगुलर मॉनिटरिंग से हेल्दी प्रेगनेंसी और सेफ डिलीवरी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। धन्यवाद
1: जी डॉक्टर मुस्कान, आपने बहुत खूब और बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है हमारे श्रोता सखियां इस बातचीत का लाभ जरूर उठाएंगी, और जो पहली बार माँ बनने वाली हैं, अगर वो सजग रहेंगी, गर्भ में पल रहे नन्ही सी जान, तो बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित भी। डॉक्टर मुस्कान, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ इतने सरल शब्दों में दी, इसके लिए आपका शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: प्रथम मातृत्व में सावधानियां एवं खान पान, इस विषय पर हमारी डॉक्टर मुस्कान जो भेंटवार्ताकार थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमारी सखी शिल्पी ने उनसे बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे, और हमारी बहनों को इससे ज़रूर लाभ पहुंचा होगा, वो ज़रूर इसे सुन रही होंगी और लाभान्वित भी हुई होंगी। तो शिल्पी, ये तो भेंटवार्ता हमने बहनों को सुना दी, अपने मेहमान से मुलाकात करवा दी, तो अब कार्यक्रम में आगे चलते हैं।
3: बिल्कुल, और बहनों को सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: शिल्पी, तुमने तो बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाया। सच में अपनी तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सुभाषिनी, क्योंकि जो कार्यक्रम हमारा गृहलक्ष्मी है, महिला मंच है, हम बच्चों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, घर परिवार की बात करते हैं और समय समय पे सरकार की योजनाएं भी बताते हैं बहनों को, ताकि उसका वो लाभ उठाए। लेकिन अपनी तारीफ हम नहीं सुन पाते हैं, तो भाई आज अपनी तारीफ सुनने के लिए और बहनों को सुनवाने के लिए इस गीत को हमने चुना था, तो उम्मीद है हमारे सभी सखियों को ये गीत अच्छा लगा होगा।
0: बिल्कुल, तो अब चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव में, और अगला जो हमारा बहनों से साझा करने के लिए जो विषय है, वो हम हमेशा बहनों के लिए जानकारी लेकर आते हैं। तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख पहल है, जिसे 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण तैयार करना और उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है।
1: यह अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। अभियान मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित है। पहला है निर्मित पर्यावरण, दूसरा सरकारी भवनों, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों को दिव्यांग जनों के लिए सुगम बनाना, जिसमें रेल, ब्रेल संकेत और सुलभ शौचालयों का निर्माण शामिल है।
0: और तीसरा है परिवहन प्रणाली, जिसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन माध्यमों को दिव्यांग अनुकूल बनाना, ताकि वे स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सके। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सरकारी वेबसाइटों, सार्वजनिक दस्तावेजों और टेलीविजन कार्यक्रमों को स्क्रीन रीडर, कैप्शन और सांकेतिक भाषा के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना।
1: देश के 35 अंतर्राष्ट्रीय और 55 घरेलू हवाई अड्डों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाया जा चुका है। साथ ही प्रमुख श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों पर सुगमता ऑडिट और सुधार कार्य किए गए हैं। अब तक केंद्र और राज्य सरकारों के हजारों भवनों में रैंप और लिफ्ट जैसी सुविधाएं प्रदान कर सुगम्य बनाया जा रहा है।
0: सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है बहनों, जिस पर नागरिक सुगमता से जुड़ी समस्याओं की फोटो अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह अभियान दिव्यांगजनों के सम्मानजनक जीवन और समाज की मुख्य धारा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: तो बहनों, आज कार्यक्रम इतना ही, और कार्यक्रम में हम हमेशा आपसे मिलेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आएंगे। आपको बता दें कि आज कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की,
0: और इसी के साथ अपनी सखी सुभाषिनी
1: और शिल्पी को दें इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम, आकाशवाणी का यह रांची केंद्र है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती हैं और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
1: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें
1: जी।
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है
1: जी।
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति

0: हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन

0: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
1: कौन है?
2: दीदी।
1: कौन है?
2: दीदी। अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
3: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
2: हम थोड़ा पानी पी लें?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों, पानी पी लो। ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
2: हाँ,
3: पर ठंडा पानी था।
2: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
4: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
3: कौन है आप?
4: नहीं समझे?
3: नहीं।
4: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
2: अब गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
1: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
4: चलो।
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं? अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
1: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ।
1: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा, लाओ अम्मा,
1: लो।
3: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
6: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
7: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
8: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
7: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
9: Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
10: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
8: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो, आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुका, रुका! जाओ वहीं, रुक जाओ, रुका!
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको, चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
7: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
7: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
7: क्या देखा तुमने?
6: शब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
7: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
7: कितने लोग रहे होंगे?
6: शब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
7: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: साहब मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिक

0: मालिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
1: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
0: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
0: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर, उधर से। हाँ
2: जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
5: यस सर,
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी, जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर, जी सर।
2: कोई शक?
3: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
5: यस सर।
3: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
6: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
6: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
6: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
6: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
6: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर, जी सर।
6: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
6: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी। जैसे
3: धीरे धीरे
6: बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
3: जी सर।
6: कोई भी उठकर नहीं चाहता, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं।

0: position.
1: Yes, sir.
0: Everybody ready?
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
2: वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
3: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और श्रोताओं अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक थे NCERT। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इस समय दोपहर का 1 बजने को है। आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे थोड़ी देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिल वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भर

0: निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government led by C. Joseph Vijay won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the House. 22 MLAs voted against the confidence motion. The DMK major opposition party walked out of the assembly during the proceedings. Mr. Vijay was mandated by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Adlekar, to prove his majority in the floor of the House after his party was able to secure only 108 seats in the recently concluded assembly election. The Minister of Youth Affairs and Sports, in collaboration with the Minister of Home Affairs, has launched the national-level quiz for the Viksit Vibrant Villages Programme 2026 on the My Bharat platform. The Ministry said the quiz marks the first stage of selection for youth participation in the Immersive Border Village Engagement Programme scheduled to be held next month. All India NR Congress leader N. Rangaswamy was sworn in as the Chief Minister of Puducherry today for the record 5th term. At a ceremony held at the Lok Nivas, Puducherry, Lieutenant Governor K. Kailashanathan administered the oath of office and secrecy. Maladi Krishna Rao of the All India NR Congress and

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों के

0: संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। यह कदम पश्चिम एशिया के संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने बिना नई खरीद के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर विवाद गहरा गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कमेटी बनाने से पहले पूर्व अध्यक्षों को भरोसे में नहीं लिया गया। उन्होंने डिलिमिटेशन कमेटी में किसी भी आदिवासी नेता को जगह न मिलने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
1: केशव महतो कमलेश जी वो पार्टी के अध्यक्ष है ना, कोई व्यक्तिगत नहीं है और उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं चलता। आदिवासियों को सीटें घटी और हमें एक को रखा नहीं है। ये क्या कमेटी आपने बनाया है? और आपने SIR कमेटी रखा लेकिन डिलिमिटेशन में सुखदेव भगत नहीं, बालमुचू जी नहीं, रामेश्वर जी नहीं, बंधु त्रिकी जी नहीं, उनका प्रतिनिधित्व आपने नहीं दिया।
0: झारखंड में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देश पर श्रमिकों के लिए वर्ष भर चलने वाला निशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत नामकुम और आदित्यपुर ESIC अस्पतालों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों की जांच की जाएगी। बीमा आयुक्त प्रायण सिन्हा ने नामकुम अस्पताल का निरीक्षण कर अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई 10% बढ़ोतरी का सर्वसम्मति से विरोध किया गया। मेयर संजीव सिंह की अगुवाई में बोर्ड ने टैक्स वृद्धि वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। बैठक में पेयजल संकट दूर करने के लिए पानी टंकी स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई।
2: बोर्ड में इस चीज का निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा कि जो टैक्स बढ़ोतरी किया गया 10% वो उसको पुनः पहले ही की तरह रखा जाए, उसको बढ़ोतरी ना किया जाए। और चूंकि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों के हित में है, इसके लिए ये बोर्ड पूरा एक निर्णय लिया है।
0: राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया कि उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे राज्य में शोक व्याप्त है।
3: माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, वर्ष 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। उन्होंने वर्ष 2000 में बिहार सरकार और झारखंड गठन के बाद 2003 में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। सरल स्वभाव और स्पष्टवादी व्यक्तित्व के कारण वे बोकारो में काफी लोकप्रिय थे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज धनबाद पहुंच रहे हैं। वे जिला प्रशासन, BCCL और JRDA के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वे बेलगढ़िया टाउनशिप का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण करेंगे। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रांची दिल्ली स्पेशल 23 मई को और टाटानगर आनंद विहार स्पेशल भी इसी दिन रवाना होगी। दोनों ट्रेनें 25 मई को दिल्ली से वापस लौटेंगी। रांची पुलिस ने हिंदीपीढ़ी इलाके में बड़े नशा कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली।

0: एसपी निखिल राय के नेतृत्व में चार थानों की पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, नशीले इंजेक्शन और 8,74,200 रूपए नकद बरामद किए हैं। एएसपी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि नशे के सौदागरों ने इलाकों में अलग अलग स्पॉट बना रखे थे जहां प्लास्टिक के टेंट लगाकर ड्रग्स का सेवन कराया जाता था।
1: हमें सूचना मिली थी कि खेत मोहल्ला हिंडपिरी में कुछ लोग हैं जो नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। हमने तुरंत छापा मारा और 5 से 6 लोग को हमने अरेस्ट किया। तो हमें उसके अंदर टोटल लगभग 300 ग्राम गांजा, टेजोविन इंजेक्शन के 20 कैप्सूल, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स 40 की मात्रा में और लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर और 8.74 लाख कैश बरामद किया।
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों ने शुरुआती नुकसान की भरपाई करते हुए आज सुबह के सत्र में मामूली बढ़त दर्ज की। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 261 अंक बढ़कर 74,820 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 97 अंक बढ़कर 223,476 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,500 रूपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रूपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और कुछ अन्य जिलों को छोड़ रांची सहित अधिकांश झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बारिश हो सकती है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संताल परगना सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल ओरमांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अनुरंजनी में। हमारी आज की कलाकार हैं श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी। इनसे आप सुनेंगे खमाज में ठुमरी। तबले पर संगत कर रहे हैं चतुरलाल और सारंगी पर साबरी खान।

श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से अभी आप उपशास्त्रीय संगीत सुन रहे थे, खमाज में ठुमरी, और ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह। इनसे आप सुनेंगे चंद गज़लें। ये पहली गज़ल आइए शमात फरमाते हैं।

श्रोता हूँ, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल। लीजिए ये अगली गजल सुनिए, आवाज है जगजीत सिंह की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं और आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार। इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है।

0: है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित शपथ ग्रहण सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के पांच अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजय आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजनगर सीट से भी जीत हासिल की है। अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी व्यवस्थाएं।
2: एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में

आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। इसके पहले ये संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: स्वयं ही कट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: श्रोताओं, जय भारती कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत अपने सैनिक जवान भाइयों के लिए, और उन्हें हमारा दिल से सलाम है।
5: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
6: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
5: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
6: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

श्रोताओं, हम अपने देश के प्रहरी, हमारे सैनिक भाइयों के लिए, हमारे फौजी भाइयों के लिए, हम उनका गुणगान जितना करें वो कम है, और उनके लिए हम हमेशा सम्मान की ही नज़रों से हम उन्हें देखना चाहते हैं, और हमेशा ऐसा ही करना चाहिए।

हमारे सैनिक भाइयों के लिए। हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, सरहद पर डटे हैं, हर मौसम में वो डटे हैं, तो उनके लिए हमेशा ऊपर वाला साथ देता रहे।

हमारे सैनिक कहते हैं देश तुम मेरी शान है, लेकिन हम कहते हैं हमारे फौजी भाई हमारे देश की आन बान और शान है, और इसीलिए वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं।

0: श्रोताओं, इसी देशभक्ति गीत के साथ ही आज का जय भारती कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के लिए आयोजित की गई थीं। बोर्ड के अनुसार परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% रहा। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% दर्ज किया गया। गोमिया के पूर्व विधायक तथा झारखंड बिहार में मंत्री रह चुके माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। माधव लाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री माधव लाल सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जनसेवा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम को केवल जमानत मिली है, उन्हें आरोप मुक्त नहीं किया गया है। दुमका में दवा व्यवसायियों के विभिन्न मांगों को लेकर 20 मई को मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर यह बंद आयोजित किया जाएगा। दुमका केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह ने बताया कि 15 मई से जिले के दवा व्यवसायी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव से पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय संजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके पास से 7 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
1: पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि फतेहपुर क्षेत्र में कुछ लोग साइबर अपराध कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस निरीक्षक फारूक के नेतृत्व में एक छापा दल का गठन किया गया और उनके द्वारा वहां पर छापेमारी की गई। दो अपराध कर्मियों को साइबर अपराध करते हुए इक्विपमेंट के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद हुए हैं।
0: इधर गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से करीब 1 दर्जन मोबाइल और सिम बरामद किए गए हैं। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे।
2: सूचना प्राप्त हुई है कि बसनबाड़ी और कोलहरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा ठगी की जा रही है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और 6 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। ये लोग कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और ठगी करते थे।
0: राजधानी रांची के कई इलाकों में आज दोपहर बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज रांची सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संथाल परगना के क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल और मांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं शामिल हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप अंताक्षरी कार्यक्रम, लेकिन इसके पहले ये संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: श्रोताओं, इस संदेश के बाद हाजिर है आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है नॉन स्टॉप अंताक्षरी, से लेकर हाजिर हूँ। और चलिए आगाज करते हैं मां अक्षर से ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

श्रोताओं, रुके रुके से कदम इस गीत के आखिर में आपको मां अक्षर मिला है। लीजिए सुनिए मां अक्षर का ये गीत।

0: मिल गया, हाय बुढ़ा मिल गया, हाय मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूँ राम।
1: मुझे बुढ़ा मिल गया यानी कि यह अक्षर, लीजिए सुनिए यह अक्षर का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत में र अक्षर के लिए आपको छोड़े जाते हैं। आप अपने घरों में या जहां भी इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे तो इसे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा समय इस कार्यक्रम के लिए इतना ही था और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ पुराने और मन को भाने वाले गीत। लीजिए हम आपको सुनवाते हैं निकाह फिल्म का ये प्यारा सा नगमा, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में। संगीत है रवि का और गीत लिखा है हसन कमाल ने।

रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म गीत। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इसे हमने लिया है दिल दिया दर्द लिया फिल्म से। आवाज मोहम्मद रफी की है, संगीत दिया है नौशाद ने और गीत के बोल हैं शकील बदायूनी के।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है अनपढ़ फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, संगीतकार हैं मदन मोहन और गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान।

फिल्म अर्थ का लीजिए ये गीत सुनिए, जगजीत सिंह की आवाज में। संगीत जगजीत सिंह का ही है और गीत के बोल हैं कैफी आजमी के।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं मासूम फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने और गीत के बोल हैं गुलजार के।

इस कार्यक्रम के आखिर में आइए एक और प्यारा सा गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आज से। आवाज जगजीत सिंह की है, संगीत चित्र और जगजीत सिंह की है और गीत के बोल हैं सुदर्शन फकीर के।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का रांची मेलोडीज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के लिए आयोजित की गई थीं। बोर्ड के अनुसार परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20 रहा। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। गोमिया के पूर्व विधायक तथा झारखंड बिहार में मंत्री रह चुके माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। गुमला नगर भवन में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिर्गी रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सहिया, साथी और बीटीटी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मिर्गी रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और सरायकेला खरसावां जिले के 3 खिलाड़ी 17 मई को धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला संघ के सचिव सिकंदर महतो ने बताया कि शोभा महतो, रशिक चंद्र हासा और मिलन सोए जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं बढ़ते कदम कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप भेंट वार्ता सुनेंगे JSLPS के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में हो रही सक्षम और सशक्त भेंट।

0: कथाकार हैं मोहम्मद मोबिन थेमेटिक और कोऑर्डिनेटर पलास JSLPS और विद्यापति देवी जो लाभुक हैं इसकी और इनसे बातचीत कर रहे हैं कमलेश कुमार मिश्रा प्रस्तुति प्रभु शरण की।
1: कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। आज कार्यक्रम बढ़ते कदम में हम बदलाव की बात करेंगे। आज कार्यक्रम बढ़ते कदम में हम एक परिवर्तन की बात करेंगे। हम बढ़ते कदम कार्यक्रम में उस प्रयास से सफलता की बात करेंगे जिसने अपनी मेहनत से और JSLPS के सहयोग से अपनी जिंदगी को बदला है। कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे साथ विद्यावती देवी हैं जो आज अपने गांव जीराबार उरमांझी पंचायत कुच्चू के लिए एक उदाहरण है, जहां लोग उनकी मेहनत को देखकर कुछ सीखते हैं और उनके मन में भी एक जज्बा आता है कि जब विद्यावती देवी अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल सकती है तो हम क्यों नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से JSLPS से जुड़कर जो झारखंड में अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपनी जिंदगी बदल रही हैं। विद्यावती देवी जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जोहार, मेरा नाम है विद्यावती देवी, मैं जीराबार का रहने वाली हूँ। मेरा गांव पड़ता है जीराबार, पोस्ट कुच्चू, थाना और मांझी, जिला रांची, झारखंड।
1: क्या बात है, बहुत बहुत आपको बधाई विद्यावती देवी जी की, आज आप JSLPS से जुड़कर अपनी जिंदगी बदली है। आज हम उस कहानी को समझेंगे कि कैसे आपने शुरुआत की। विद्यावती देवी जी, कब आप JSLPS से जुड़ी?
2: मैं JSLPS में 2018 में मैं जुड़ी हूँ। जो मेरे समूह में मैं जुड़ी, उस छोटा मोटा समूह में चला रही थी। तभी हम गांव में हम अपना घर का काम करते और किसान खेती बाड़ी के साथ हम धीरे धीरे सुने जान पहचान आया कि JSLPS समूह में हम बचत कर रहे थे। पहले तो हम कहीं बचत नहीं करते थे, गांव देहात में रहते थे हम लोग। जो हम लोग खेतीबाड़ी करते थे और बाल बच्चा को पढ़ाते थे, तब से हमको गांव में हम लोग का पता चला कि एक समूह सबको जुड़िए JSLPS द्वारा है, उसमें आप पैसा जमा कीजिए। जो धीरे धीरे 20 रुपया से हम शुरुआत किए।
1: 20 रुपये से आपने शुरुआत की?
2: जी, उस समय हम लोग का पैसा उतना हम लोग का होता नहीं था। खेती बाड़ी भी करते थे, बाल बच्चा को भी पढ़ाते थे, उसमें हम लोग को ज्यादा आमदनी भी नहीं था। तो हम 20 रुपया से ही हम शुरुआत किए।
1: अच्छा, ये 20 रुपये आपको कब देना पड़ता था?
2: सप्ताह में एक बार हम बैठक जब करते थे समूह में, उस समय हम 20 रुपया हर साप्ताहिक बैठक 20 रुपया में रखती थी।
1: ठीक है, तो कैसे फिर, अब जो मेरी जानकारी है कि आज आप ट्रैक्टर चलाती भी हैं
2: जी,
1: और आपको JSLPS के माध्यम से ट्रैक्टर मिला
2: जी,
1: तो ये जो 20 रुपये से आपने शुरुआत की और ट्रैक्टर तक पहुंची, ये कैसे हुआ?
2: मैं धीरे धीरे हर सप्ताह में 20 रुपये जमा करती थी, बैठक में सही से जाती थी और मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा, मैट्रिक तक ही पढ़ी थी, लेकिन जानकारी हमको धीरे धीरे मिला तो हमके समूह का सदस्य ने हमको अध्यक्ष बनाया, समूह का अध्यक्ष बनाया हमको कि दीदी अच्छा से बैठा करती है, जानकारी लेती है, अच्छा करती है, समूह में अच्छा सही समय आती है, तो इसको सभी दीदी लोग चुन के हमको समूह का अध्यक्ष बनाया। जब हम धीरे धीरे अध्यक्ष बने, उसका धीरे धीरे जब हम लोग 2018-19 हुआ, तब से हम वीओ में हम लोग वीओ बैठक हुआ, वीओ से हम CLF गए, CLF सब जाते, जब हम जाने आने लगे तब हम घर का भी काम करते थे और समय समय निकला कि हम लोग का पंचायत में बैठक होता था वीओ ऑफिस, उसमें हम जाती थी और हमें वहाँ जानकारी, बहुत तरह की जानकारी हमको मिल, अब अपना हम गांव में आके बताते थे। तब से हमको धीरे धीरे पता चला कि नहीं, दीदी लोग को सबको अपना खेती बाड़ी बढ़ाने से थोड़ा सा लोन भी दिया जाता है। तो हम धीरे धीरे अपना 20 रुपये बचत करते करते मेरा 4,000-5,000 होते होते फिर अच्छा से लेन देन करने लगे, तो हमको वीओ से हमको लोन मिला।
1: कितना
2: तो
1: का लोन आपने लिया दीदी?
2: हम शुरू में 85,000 का लिए लोन, और इधर हमको मदद मिली और JSLPS द्वारा हमको, हम जिस जाने लगे वीओ में तो हमको MDI जो ड्रिप बोलते हैं 25 डिसमिल में, JSLPS द्वारा हमको MDI भी मिला कि दीदी जाती है खेती बाड़ी करती है तो इसको ड्रिप भी दिया जाए, तो हमको ड्रिप MDI जो खेती हमको 25 डिसमिल मिला,
1: ड्रिप इरिगेशन।
2: अच्छा, हाँ, ड्रिप इरिगेशन जो 25 डिसमिल के लिए JSLPS द्वारा दिया जाता है, उसमें मैं खेती करने लगी धीरे धीरे और मेरा क्षति ज्यादा

0: होने लगा और मेहनत कम और रिस्क अनुसार मेरा खेती प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। तब अब हम शुरू में हम कुली हैं, हम तो देहात का थे, सब्जी लगा तो लेते थे, उपजा तो लेते थे, लेकिन हम बेचने के लिए ले जाने के लिए मार्केट हमको बहुत दूर पड़ता था, दूर पड़ता था। उसके बाद हम तो उसी से लिए और जब अपना बाजार खुद से, मेरा हस्बैंड चलाते थे, थोड़ा मोड़ा हम भी चला लेते थे, मेरा हस्बैंड सिखा दिए, हम गांव घर में हम भी टेम्पू चला लेते थे, सीख लिए थे। और उसके बाद हम मेरा सब्जी हम देखे, मेरा और गांव घर का था, मेरा ही टेम्पू में ले जाते थे, तो हमको 2 पैसा ज्यादा आमदनी होने लगा, 2 पैसा ज्यादा आमदनी होने लगा। तब धीरे धीरे हम जाके, मेरा स्थिति बहुत खराब था पहले, जैसे जैसे हम जैसलपीएस में जुड़े और धीरे धीरे हमको जानकारी भी मिला, हम आना जाना भी करने लगे, उसी से हमको सब कोई हमको जानकारी हमको पहचाने लगे कि दीदी अच्छा खेती बाड़ी करती है।
1: तो आप ये बताएं विद्यावती जी, क्योंकि आज बहुत सारी महिलाएं आपको कार्यक्रम बढ़ते कदम में सुन रही हैं और आपको कार्यक्रम में शामिल का उद्देश्य भी यही कि लोग इस बात को समझे कि सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से उनके साथ खड़ी है, जरूरत आगे बढ़ने की है। आप ये बताएं कि ये जो जेएसएलपीएस में क्या क्या सुविधाएं आप लोग को मिल जाती हैं, जैसे ही एक तो आपको ये आपने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर किस स्कीम के माध्यम से लिया और क्या क्या सुविधाएं आप लोग को जेएसएलपीएस से मिलती हैं?
0: जेएसएलपीएस हम जब हम जो हम बीओ बने उसके बाद हम जाने लगे जो ब्लॉक में, तभी हमको भैया जो जेएसएलपीएस ऑफिस में, हम लोग और मांझी ऑफिस में, हम लोग जो भैया लोग एमसीटी भैया लोग रहते हैं, जैसे प्रशांत भैया है, मोबिन भैया है, धनवती दीदी है, वो हमको जानकारी दिए कि दीदी आप लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उसका सुविधा अलग, ट्रैक्टर आप लोग को अनुदान राशि भी मिलेगा, क्यों आप लोग लेना चाहते हैं? हम तो खुश हो गए, जिसको हम तो 25 डिसमिल से खेती बाड़ी करते करते, मैं 3-4 एकड़ हम खेती करती हूँ, तो हम बहुत दूसरा ट्रैक्टर जोतवाती थी तो बहुत महंगा पड़ता था, तो वही भैया लोग हमको जानकारी दिए कि अनुदान से, अनुदान राशि में समूह तरफ से आपको जेएसएलपीएस तरफ से सब्सिडी में ट्रैक्टर मिलेगा, मिल रहा है
1: तो कितना अनुदान आपको मिला इस ट्रैक्टर में? आपको
0: हमको,
1: कितना पैसा देना पड़ा और सरकार ने आप कितना पैसा दिया?
0: 10 लाख का ट्रैक्टर था, उसमें
1: जी
0: हमको 5 लाख रुपया ही देना पड़ा, उसका साथ हमको ट्रैक्टर, हॉर, रोटर और केजुअल तीनों हमको, चारों हमको 5 लाख में हमको सब कुछ मिल गया।
1: यानी 10 से 12 लाख रुपए का जिस ट्रैक्टर उसकी इक्विपमेंट्स का दाम
0: जी,
1: था उसको आपको सिर्फ 5 लाख रुपए में
0: पांच
1: मिल गया,
0: लाख में ही मिल गया,
1: क्या
0: 5 लाख
1: बात
0: में,
1: है।
0: तो हम बहुत खुश हुए कि हम 10 लाख रुपया हम कहाँ पाते, जब हम खरीदने जाते तो हमको 10 लाख रुपया हमको खरीदने में हमको सोचना पड़ता, हम धन्यवाद बोलते हैं जेएसएलपीएस को, आज जिसने हमको सब्सिडी में, हमको झारखंड सरकार मुख्यमंत्री जो हमको सब्सिडी में समूह द्वारा हमको दिया, वह हम धन्यवाद करते हैं, जो हमें 5 लाख रुपया हमको ट्रैक्टर मिला,
1: क्या बात है,
0: और वो ट्रैक्टर जब हमको मिला तो हम खुद अपना गांव में ला के हम खुद चलाने के सीखे।
1: आप अच्छा दीदी ये ठीक है, चलिए हेल्प तो सरकार करती है, लेकिन
0: जी
1: आप में ये हिम्मत ये आत्मविश्वास कैसे आया कि ट्रैक्टर भी आपको खुद से ही चलाना है?
0: भैया, देखिए सोच रखिएगा ना तो सब कुछ कर सकिएगा, अपना सोच हिम्मत रखिएगा तो सब कुछ कर सकते हैं, हमको ऑटो, मेरा घर में सब चीज रहेगा ना तो चलाने में क्या है, हुँ? घर में ऑटो ऑटो भी चला लेते हैं, और ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर भी, मेरा हस्बैंड मेरे बच्चा लोग भी हमको बोले कि मम्मी तुम भी सीखो, सिखा देंगे, और थोड़ा थोड़ा भी हम चलाने लगे।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपको कार्यक्रम में हमने शामिल किया है। आपने इंटरव्यू के दौरान अभी कहा कि 25 डिसमिल से आपने शुरुआत की
0: जी
1: और आपको उसके लिए ड्रिप इरिगेशन दिया गया,
0: जी
1: लेकिन आज वो
0: जैसे
1: 25 डिसमिल 3 एकड़ में बदल गया है।
0: जी 3 से 4 एकड़ में हम आगे खेती बढ़ा
1: तो क्या क्या करती हैं आज आप खेती में विद्यावती
0: दिए,
1: जी?
0: अभी हम 2 एकड़ में तारबूज लगाए हैं भैया, जो हम बेच चुके हैं अभी तारबूज, मेरा 30 से 40 डिसमिल में मेरा करेला लगा है, मतलब मिक्स सब्जी बहुत जितना है सब हम लगाते हैं, जो सीजन सीजन बाय सीजन होता है उसमें सब हम सब्जी लगाते हैं, और खुद मेरे गांव से गाड़ी आता है वो हम लोग को ले जाते हैं।
1: यानी आज विद्यावती जी जो एक 20 रुपए से शुरुआत की थी, आज हम कह सकते हैं कि एक लखपति दीदी बन गई हैं।
0: जी,
1: कितना अच्छा लगता है आज जो आपके जीवन में ये एक बदलाव आया, आपके बच्चे क्या कहते हैं, गांव में जब
0: जैसे
1: लोग बात करते हैं क्या कहते हैं आपके बारे में?
0: वो कहते हैं देखो धीरे धीरे ऑटो चलाती थी, अब तो सुनते थे कि देखो देखो दीदी जा रही ऑटो चला सीख गई, आप

0: हम गांव से लेकर अपना पंचायत से लेकर ब्लॉक तक हम जान रहे कि मेरा दीदी लोग हमको बोलती, देखो दीदी ट्रैक्टर चलाने वाली दीदी है जी,
1: ट्रैक्टर वाली लखपति दीदी है।
0: गांव
1: क्या
0: से
1: बात।
0: बोलती दीदी, गांव से पंचायत, पंचायत से हम ब्लॉक तक चल गया, तब दीदी बोलती देखिए ट्रैक्टर चलाने वाली दीदी है।
1: आज आप उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? आज आपके जैसी बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, उनको अभी भी संकोच होता है, उनसे क्या कहेंगे आप?
0: हम उसी वही दीदी लोग को कहना चाहते हैं, अपना हिम्मत में जो मन में ठान लीजिएगा वो करके रहिएगा, जो धीरे धीरे आप बाहर तो निकलिएगा तब तो दुनिया हाल देखिएगा, जानिएगा कि पीछे हटना नहीं है, आगे से आगे बढ़ के देना है, तब तो जानिएगा कि हाँ मैं महिला कुछ भी कर सकती है।
1: एक बात
0: समस्या तो
1: बताइए,
0: बहुत आता है रास्ता में, लेकिन हम लोग को ढल के आगे बढ़ना होता है।
1: विद्यावती जी, एक बात बताएं आप कि अक्सर तो हम लोग हमेशा यही पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि जो गांव की महिलाएं होती हैं वो दबी हुई होती हैं, जो गांव की महिलाएं होती हैं वो डरी हुई होती हैं, लेकिन आपसे बात करके तो मुझे सारी चीजें उल्टी लग रही हैं। आप में आत्मविश्वास भी है, आप में कुछ करने की चाहत भी है।
0: धीरे धीरे हमको भी इसी तरह लग रहा था, धीरे धीरे हमको भी लग रहा था कि हम कर पाए कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे स्थिति आते गया वैसे वैसे अपने आप को हम हिम्मत नहीं हारे और धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए। रास्ता में तो बोलने वाला रोकने वाला कितना आदमी रहता है, लेकिन
1: बहुत सारे
0: दूसरा
1: लोग
0: तो
1: होंगे जो
0: सुनिएगा
1: बोलते भी होंगे,
0: जी,
1: देखो घर से बाहर निकल रही है, ऐसे कर रही है, बाहर जाती है।
0: उन लोग को तो हम लोग कुछ घर तो नहीं चला देगा, कोई तो नहीं कर देगा, अपना घर का आदमी साथ देगा तो हम लोग कुछ भी आगे कुछ भी कर सकते, आगे बढ़ जाते हैं,
1: यानी रुकना नहीं है
0: रुकना नहीं है,
1: और
0: अपना चलते रहना है,
1: चलते
0: जो
1: रहना।
0: हो चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है।
1: सरकार से क्या कहेंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगी, जिस
0: मुख्यमंत्री को
1: तरीके
0: मैं धन्यवाद देती हूँ जो हमको ट्रैक्टर मिला, और मैं ट्रैक्टर मिला तो मैं खेती बाड़ी और ही आगे बढ़ा रही चाहती हूँ, जो हमको सब्सिडी में, जो हमको 10 से 12 लाख रुपया हम ना सोच भी नहीं सकते थे कितना पैसा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ट्रैक्टर कभी लेंगे लेंगे, लेकिन हमको सब्सिडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो तिरकी नेहा शिल्प तिरकी है जो है वो दीदी को भी धन्यवाद करते हैं कि हमको सब्सिडी में 5 लाख रुपया में हमको सब ट्रैक्टर मिल गया,
1: क्या बात है,
0: लेकिन
1: बहुत
0: हम
1: बहुत
0: खेती बाड़ी और मैं सोच रही हूँ कि और आगे मैं खेती करूँ और मैं खेती बाड़ी आगे बढ़ाऊँ, जो हेल्प हमको बहुत मिल गया
1: मुझे ये बताएं विद्यावती जी कि एक आपने अपनी शुरुआत की, अब जब
0: जी।
1: आप धीरे धीरे आपका काम बढ़ा, आज आपके अंदर कितने लोग, गांव के लोग काम कर रहे हैं?
0: मेरा गांव के लोग तो सब वो भी हम लोग जो गांव का जो एक ग्रुप बना है दीदी लोग को जो देखते हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये लोग हमको भी खुद बोल रही है, मेरा देख के बोल रही है कि देखो दीदी से कुछ सीखो, कि दीदी आज अच्छा से स्कूटी तक नहीं चलाने जानती थी, रास्ता नहीं चला सकती, गाड़ी चला रही है।
1: आज कितनी कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है अपने अंदर?
0: मेरा अंदर
1: जी
0: 10 दीदी काम कर रही है, गांव का तो सब धीरे धीरे बढ़ रही है, मेरे अंदर आगे जा रही है, हम सब कुछ चीज को जानकारी देख रहे हैं, और सब दीदी लोग बोल रही है कि हम भी तेरा जैसा करेंगे, हम भी जाएंगे, आप हमको देख देख के दीदी लोग वही बोलती है कि नहीं हमको बता तुम कहाँ जाती है, कैसे जेएसएलपीएस में जुड़ के तुमको क्या क्या फायदा, हमको पूछती है हम कि देखो जेएसएलपीएस जुड़ने से इतना ही फायदा होता है, समूह द्वारा से हमको खेती बाड़ी को जानकारी मिला, हम फसल खेती बाड़ी समूह द्वारा सब चीज जानकारी हो कि अपने खेती बाड़ी आगे बढ़ाए और ट्रैक्टर लिए और आगे सब दीदी लोग को इससे बताते हैं, तो वो लोग भी दीदी लोग बोलती है कि आगे बढ़ वो लोग होती है कि हम भी आपको जानकारी लेंगे और हम भी करेंगे आप ही जैसा।
1: क्या बात है, यानी लोग आज आपके काम को देख के, आपके कामयाबी को देख के उनमें भी एक उत्साह है कि हमें भी इससे जुड़ना है, हमें भी बेहतर काम करना है।
0: जी ऐसा बहुत दीदी लोग थी कि जैसे पीएस में नहीं जुड़ रही थी और जमा नहीं करती, बोलती थी कि सब तो ठोक है, पैसा भी रखेंगे लूट के ले जाएगा, पैसा रखेंगे लेकिन इतना दीदी हमको देख के धीरे धीरे शुरू से आज सब ऐसा दीदी है कि सब कोई जेएसएलपीएस में जुड़ गई, वो एमडीआई मिला 25 दिसंबर में, और दीदी लोग को हम बोलती हमको भी भर दीजिए, हम भी बिल दीजिए जेएसएलपीएस द्वारा, हमको भी दिलवा
1: ये
0: दीजिए,
1: आप एमडीआई बार बार बोल रही, एमडीआई क्या है?
0: वही ड्रिप ड्रिप क्रिस्ट
1: ड्रिप इरिगेशन जो आपको मिला,
0: जी हाँ ड्रिप उसको एमडीआई ही बोलते हैं। ठीक
1: एमडीआई बोलते हैं। अब एक बात बताइए विद्यावती जी, पहले तो कि आप बधाई के पात्र हैं कि आज आपने अपनी मेहनत से और जेएसएलपीएस के सहयोग से, झारखंड सरकार के सहयोग से यहाँ तक पहुंची। आप अपने परिवार के बारे में बताइए, आप आपके परिवार में आपके कितने बच्चे हैं,
0: मेरे 3 बच्चे हैं,
1: क्या क्या कर रहे हैं वो लोग?
0: दो बेटा है, मेरे हस्बैंड है, हम लोग खेतीबाड़ी जो

0: हम लोग करते हैं, और मेरा बेटा है जो 22 साल का है, वो
1: एग्रीकल्चर
0: अभी वही
1: पे काम कर रहे हैं,
0: हाँ एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, फूलों का दुकान कर रहे हैं।
1: क्या बात
0: हम
1: है,
0: अब अपना
1: वाह
0: नर्सरी खुद का खोले हैं, अपना खुद का मेरा नर्सरी है, पेड़ पौधा हम लगाते हैं, दूसरों को भी लगवाते हैं। मेरा बेटा उसमें, मेरा ही नाम से मेरा दुकान है,
1: अब बेटियां क्या
0: और
1: कर रही हैं?
0: बेटी और छोटा बेटा है, वो लोग पढ़ाई कर रहा है अभी। मेरा छोटा बेटा इस साल मैट्रिक लिखे हैं, मेरी बेटी है अभी कुछ साईनाथ यूनिवर्सिटी है जो है उसमें
1: जी
0: 12th का BCA में पढ़ाई कर रही है।
1: वाह, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? आपने बताया कि आप 10th
0: जी
1: तक पढ़ी हैं।
0: जी मैं मैट्रिक तक ही पढ़ी हूँ। मैं सोचती थी कि मैं कम पढ़ी हूँ तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी, लेकिन देखिए पढ़ाई कम पढ़े हैं लेकिन अपना हिम्मत नहीं हारे, और कम पढ़ के ही मैं आगे बढ़ रही हूँ।
1: एक बात बताएं कि जो जब पहले के विद्यावती देवी की बात हम करें और आज के विद्यावती देवी की बात करें, आपकी जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आ गया?
0: पहले हम बताते थे, पहले मेरा परिवार तो बहुत गरीब थे, और मैं पहले बात बताती हूँ, मैं सच बात कि मैं जिस वर्ष मेरा शादी हुआ था तो
1: जी
0: मेरा गांव में मेरा कुछ नहीं था, लाइन उन मेरा 2004 में शादी हुआ था, मेरा गांव में लाइन भी नहीं था, और मेरा मायके में लाइन उन सब कुछ था, लेकिन अब मैं कम पढ़ी भी थी, तो जैसे हम धीरे धीरे पर यहाँ आई हूँ, मेरा हस्बैंड साथ दिए और हमको पढ़ाए, हमको मैट्रिक तक पढ़ाए, यहाँ ससुराल से आके मैं मैट्रिक तक पढ़ी, तब हम जाके JSLPS में हम जुड़े ना, तब हमको धीरे धीरे करते करते, हमको कम पढ़े भी थे लेकिन जब JSLPS में जुड़ के ना, हमको आगे लगा कि हम और पढ़ेंगे बोल।
1: आज आप क्या सोचती हैं, आपके बच्चे और कहाँ जाएं? आपकी बेटी अभी पढ़ रही है, आपका छोटा बेटा पढ़ रहा है, क्या चाहती हैं आप उनसे?
0: मेरा बेटा बेटी मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो मेरा बेटा सोच रहे हैं मेरा बेटे और आगे बढ़े, मेरा एग्रीकल्चर दुकान जो है नर्सरी जो खोले हैं, मेरा बेटा उस क्या बोलते हैं उसको आगे बढ़ा बता जाए, और इतना मैं पढ़ी हूँ कम, तो मेरा बाल बच्चा मेरा ज्यादा पढ़े।
1: मैं चाहूंगा कि आज आप हमारे श्रोताओं को बताएं, आकाशवाणी में हमारे कार्यक्रम बढ़ते कदम में बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और एक मोटिवेशन भी उनको मिल रहा होगा कि जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आप पहले से हार मान जाएं। जिंदगी में कुछ है नहीं भी है, अगर आपने ठान लिया है तो आप उसको अचीव कर सकती हैं। आज विद्यावती जी के पास में हर वो संसाधन है, रहने का, खाने का, घूमने का, सुख सुविधा, पैसा, हर कुछ
0: जी
1: आपकी
0: और
1: मेहनत ने
0: यहाँ
1: दिया।
0: जी मेरा घर तो पहले मिट्टी का था, मेरा मेरा मिट्टी का घर था, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई वैसा वैसा मैं घर घर
1: आज घर कैसा है आपका?
0: घर में पक्का का घर बना ली हूँ, 2 तल्ला घर बना ली हूँ, धीरे धीरे जब से मैं आई हूँ खेती बाड़ी के साथ साथ मैं घर भी बना रही हूँ। मेरा पानी का बहुत दिक्कत था, मैं घर का खुद का बोरिंग करवाई हूँ, खुद का घर में बोरिंग है, और मेरा 2 बोरिंग है, उसमें मैं खेती बाड़ी भी मैं जिसमें जिसमें पटाते हैं घर
1: जी
0: के लिए और पटवन के लिए मैं अलग करती हूँ, और मैं धीरे धीरे आगे इस तरफ, मेरा बहुत पहले स्थिति बहुत क्या बोलते हैं साइकिल से सब्जी बेचने जाते थे। जी
1: साइकिल से सब्जी, और आज बच्चे
0: जी
1: आपके अच्छे जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं,
0: साइकिल
1: एमबीए
0: से
1: कर रहे
0: बाजार
1: हैं।
0: ले जाते थे, साइकिल से मैं बाजार ले जाती थी सब्जी, कभी लोग सामने जो बाजार है उसे माथा बो के मैं बाजार ले गई, उस समय मेरा स्थिति ऐसा था ना, माथा से मैं बाजार ले गई, लाके बेचती भी थू, अपना समूह भी चलाते थे, धीरे धीरे जैसल पे बैठक भी जाते थे, खेती बाड़ी भी करते थे और बाजार भी जाते थे, बच्चा को पढ़ाते थे करते थे। अब मेरा इतना क्षति हो गया कि बच्चा जैसे से भी मेरा बढ़ बढ़ गया, और मैं घर का गाड़ी भी मेरा भी हो गया,
1: गाड़ी भी
0: ऑटो भी
1: आपके
0: हो
1: पास है,
0: गया,
1: अपनी
0: ऑटो है, ऑटो ट्रैक्टर
1: ऑटो, खुद की ऑटो है,
0: ऑटो खुद का ऑटो है, जब मैं खुद भी ऑटो चला लेती हूँ,
1: आप ऑटो भी चला लेती हैं,
0: ऑटो भी चला लेती हूँ, मेरा
1: क्या
0: घर के
1: बात
0: जो
1: है।
0: पास है साग सब्जी जो मेरा घर में रहते हैं तो अपने हस्बैंड को हेल्प कर देते हैं, बाजार तक नहीं आते हैं घर तक ला देते हैं, मेरा गाय उसे है तो घास उस काटते हैं तो ऑटो से ही लाते हैं अपना।
1: क्या बात है, यानी विद्यावती देवी जी के घर आज उनकी अपनी नर्सरी है, उनका अपना खेती बाड़ी है, उनका अपना ट्रैक्टर है, उनका अपना
0: ट्रैक्टर
1: ऑटो
0: है,
1: है,
0: बोरिंग है, सब चीज है,
1: क्या बात है, बहुत बहुत
0: कुछ
1: बधाई। अब मैं चाहूंगा कि आज जो आपको सुन रहे हैं, जो महिलाएं JSLPS में शुरुआत करना चाहती हैं, अपनी समूह बनाना चाहती हैं, उनको आप प्रोसेस बताएं वो कैसे शुरुआत कर सकती हैं।
0: धीरे आजकल तो JSLPS तो सब जगह पता चल जाता है, जानती है, लेकिन कोई दीदी ना बैठना ही जानबे नहीं करती है, चाहबे नहीं करती है कि मैं जाऊं उसे, तो आदमी बहुत आदमी सोचता है कि मैं ठग है, लेकिन जाएगी दीदी समूह में बैठेगी, समझेगी तब तो कुछ जानकारी दीदी लोग को मिलेगा। हम दीदी लोग को ही कहना चाहते हैं, दीदी समय में काम तो अपना घर का है, ये है काम अपना घर का, काम तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हम बोलते हैं दीदी 2 पैसा आपका बचत भी होगा, आपको जैसलमेर तरह से कुछ लोन भी मिलेगा जिसमें आप धीरे धीरे आपको चुकाइएगा और अपना बड़ा बड़ा भी काम कर दीजिएगा जो हम लोग को सहारा मिलता है।
1: यानी शुरुआत की जरूरत है, आप पहले ही नहीं समझ ले कि कुछ जाके फायदा नहीं है या घर से नहीं निकले, आपको निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको उसको
0: जाना
1: जानना पड़ेगा।
0: पड़ेगा, बैठिएगा 2 मिनट समय दीजिएगा तब तो समझिएगा दीदी लोग को, जाइएगा बैठिएगा समझिएगा दीदी लोग के बैठक में कितना पैसा जमा करना है, कितना दीदी लोग कितना आजकल इतना चीज मिल रहा है तो दीदी लोग बोलते फायदा लीजिए, आप लोग भी दीदी लोग बोलते फायदा लीजिए, कुछ
1: यानी
0: फायदा लीजिएगा जानिएगा तब तो फायदा लीजिएगा,
1: और
0: घर
1: समूह
0: से
1: से जुड़ के तो
0: निकलिएगा तब
1: बहुत
0: तो
1: सारी चीजें मिल रही हैं।
0: जी समूह में जुड़िएगा तब तो फायदा लीजिएगा। अभी जब हम समूह से जुड़े हैं तब तो हम ट्रैक्टर लिए, वहां से जब हम ट्रैक्टर लेने गए तो तुमको और चीज को जानकारी मिला, हम आगे गए तो और चीज को जानकारी मिला कि ट्रैक्टर साथ साथ और चीज को भी सब्सिडी, ऐसा बहुत चीज है कि सब्सिडी भी मिलता है। हम ये आप देखिए सब्सिडी में आटा पीसने वाला मशीन लिए हैं जो घर में ही आटा पीसते हैं, जो दीदी लोग अगल बगल का जो आटा पिसवाने के लिए लाती है सब्सिडी।
1: आपने आटा पीस आटा चक्की का भी मशीन रखा है?
0: जी
1: यानी विद्यावती जी क्या सब काम आप ही करेंगी क्या?
0: नहीं सब सब कोई आदमी इस चीज में कमी है, सब कोई दीदी को बोल रहे हैं आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी कीजिए, सबको हम बोल रहे हैं दीदी घर से निकलिए समूह में जुड़िए जैसलमेर द्वारा जुड़िए सब्सिडी फायदा लीजिए, आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी निकलिए घर से निकलिएगा तब तो आगे बढ़िएगा। और मेरा ही जैसे आप लोग भी बोलते हैं ट्रैक्टर चलाइए गाड़ी चलाइए सब कोई आजकल चलाता है, डरिए
1: चलिए, बहुत
0: मत डरिए मत आगे बढ़िए।
1: डरिए मत, आगे बढ़िए। विद्यावती जी, आप हमारे कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताई, इतना मोटिवेशन दिया, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें ये समझ में आया कि जिंदगी में कभी भी हारना नहीं चाहिए,
0: हारना नहीं
1: बस
0: चाहिए आगे बढ़ते जाइए,
1: आगे बढ़ना
0: आगे
1: चाहिए।
0: बढ़ते जाइए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया विद्यावती जी कार्यक्रम बढ़ते कदम में
0: धन्यवाद
1: शामिल होने के लिए।
0: धन्यवाद
1: आज कार्यक्रम बढ़ते कदम में हमारे साथ विद्यावती देवी थी, और एक उदाहरण हम सबके लिए कि आप अगर मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। विद्यावती देवी जीराबार गांव और मांझी से पंचायत कुच्चू से बिलोंग करती हैं, जेएसएलपीएस से जुड़ी, समूह से जुड़ी, मेहनत की, ऑटो चलाने से लेकर आज खुद की ट्रैक्टर चला रही हैं, आटा चक्की खुद का है, नर्सरी खुद का है, खेती बारी भी कर रही हैं, और एक उदाहरण बन गई हैं। बारी आपकी है, आपको भी आगे बढ़ना है। कार्यक्रम बढ़ते कदम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम। JSLPS के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हो रही है सक्षम और सशक्त। भेंटकर्ता कमलेश कुमार मिश्र की थी प्रस्तुति प्रभु सरन की।

शाम 4:35 पे आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार का वक्त होगा 5 बजे।

युवाओं पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:02 से। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोग। 5:06 आप सुन पाएंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। 7 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:11 पे आप सुनेंगे जिले में आजकल।

7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया सुनेंगे आप। 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में।

समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 से 9:30 पर दिल्ली से कार्यक्रम होगा। चर्चा का विषय बाद में आपको बताया जाएगा। 10:00 कार्यक्रम आप सुनेंगे, नाटक 10:30 पे कार्यक्रम होगा।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम सांझ सरगम में। आइए सुनते हैं सांझ सरगम का पहला गीत, फिल्म सतरंज से। गीत समीर के हैं, संगीत आनंद मिलन के, आवाज कुमार सानू और साधना सरगम की।

आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी के है, धुन अनु मलिक के, सुर साधना सरगम की और उदित नारायण की। फिल्म का नाम बाजी।

0: अब वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: अंतराल के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम सांझ सरगम में। अगला गीत फिल्म कलाकार से, गाने को लिखा है इंद्रवार और मनोज कुमार ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी के हैं, आवाज किशोर कुमार की।

आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म के गीतकार है मुकुल दत्त, संगीतकार है आर डी वर्मन, आवाज कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म बालिका वधू से। संगीत आर डी वर्मन के है, आवाज अमित कुमार की और गीत आनंद बख्शी के है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम। अब कुछ ही देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। झारखंड के पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाया गया, जहां मंत्री और विधानसभा कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास गोमिया ले जाया गया। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने नगर आयुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में देसी कट्टा लहराकर होटल संचालक से विवाद कर रहे तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा, दो बाइक और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं। और खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो उर्फ राजेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, दो गोलियां और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रिया,
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका बिरवा।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब अपने काम, पढ़ाई, करियर और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ को ही पीछे छोड़ देते हैं, और वो है हमारा स्वास्थ्य। अक्सर लोग कहते हैं बस थोड़ा और काम कर।

0: ले आराम बाद में कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो ना काम में मन लगेगा ना जीवन का आनंद मिल पाएगा।
1: बिल्कुल प्रियंका, इसलिए आज हम अपने हेल्थ को प्राथमिकता देने के बारे में बात करेंगे। स्वस्थ रहना सिर्फ बीमारी से दूर रहना नहीं है, इसका मतलब है शरीर को फिट रखना, मन से खुश रहना और अंदर से एनर्जेटिक महसूस करना।
0: हम अक्सर अपने शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। थकान हो रही है तो सोचते हैं चलो ठीक हो जाएगा, नींद पूरी नहीं हो रही तो कहते हैं अभी काम जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यही छोटी लापरवाहियां आगे चलकर बड़ी समस्याएं बन सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। दोस्तों, अगर हम सच में खुद को प्यार करते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत थोड़ी एक्सरसाइज या योग के साथ की जा सकती है। हर दिन पैदल चलना, समय पर खाना खाना और भरपूर पानी पीना, ये छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और प्रियंका, हमें अपने खाने पीने की आदतों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाहर का तला भुना खाना स्वाद तो देता है लेकिन शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। हरी सब्जियां, फल, दाल, दही और पौष्टिक भोजन हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: हाँ रिया, इसके साथ ही पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। अगर शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो हम पूरे दिन थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। और दोस्तों, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। रिया, आजकल हम देख रहे हैं कि चिंता और तनाव बहुत आम हो गए हैं। ऐसे में अपने परिवार, दोस्त या किसी करीबी के साथ समय बिताना, मन की बातें शेयर करना और खुद को थोड़ा आराम देना भी बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। कई बार लोग यह सोचते हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिन में सिर्फ कुछ मिनट खुद के लिए निकालें और अपनी सेहत को ध्यान दें। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही आगे चलकर हमारे लिए ज्यादा अच्छी हो सकती है।
0: इसीलिए याद रखिए दोस्तों, पैसा, सफलता और काम, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अच्छी सेहत के बिना इन सब का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपने शरीर की सुनिए, खुद को समय दीजिए और स्वास्थ्य को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं।
1: तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन।
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
7: आरबीआई कहता है,
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने वो गीत को एंजॉय किया होगा। आज का युवा सपने तो बहुत बड़ी देखता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई खिलाड़ी, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन।
10: बिल्कुल, लेकिन इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है?
9: एक स्वस्थ शरीर और एक्टिव लाइफस्टाइल। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ना मन काम करेगा, ना सपने पूरे करने की ताकत मिलेगी।
10: बिल्कुल दोस्तों, आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है। सुबह उठते ही मोबाइल, खाना खाते समय मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, और घंटों तक सोशल मीडिया, गेम्स और स्क्रीन के सामने बैठे रहना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा सा बन गया है।
9: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि इसका असर हमारे शरीर और दिमाग पर कितना पड़ रहा है?
10: बिल्कुल, कम उम्र में थकान, कमजोरी, मोटापा, आंखों की समस्या, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है, और कई युवा तो थोड़ी देर चलने में भी थक जाते हैं, और इसका कारण है इनएक्टिव लाइफस्टाइल।
9: लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि अगर हम आज से ही छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएं तो हम अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं।
10: जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो सुबह की शुरुआत ही अच्छे से करें, खुली हवा में जाए, थोड़ी देर वॉक करें और साथ ही साथ योग भी करें।
9: साथ ही अगर आपको जिम पसंद नहीं हो तो कोई खेल खेलिए, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, साइकिलिंग या डांस, कुछ भी करें लेकिन शरीर को एक्टिव रखें।
10: बाहर के खाने जैसे जंक फूड से बचें, देर रात तक ना जागे, अपने स्क्रीन टाइम को कम करें, हर दिन थोड़ा समय अपने आप को दीजिए और सेहत पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज नॉट एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट।
9: बिल्कुल दोस्तों, आइए अब जानते हैं इतिहास में आज के दिन के बारे में। आज के दिन 1648 में दिल्ली में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया, जो भारतीय इतिहास और वास्तुकला का प्रतीक बना।
10: साथ ही आज ही के दिन 1951 में लखनऊ के प्रसिद्ध उर्दू शायर और स्वतंत्रता सेनानी हसरत मुहानी का निधन हुआ, जिन्होंने मुझे राहत मिले ना जख्मों की तकलीफ से जैसे मशहूर पंक्तियां लिखी थी।
9: आज ही के दिन 1952 को भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म हुआ, जो भारतीय राजनीति और विधायी इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।
10: आज ही के दिन 1952 को ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद, राज्यसभा और लोकसभा का पहला सत्र आरंभ हुआ था, जो देश के संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख माइलस्टोन माना जाता है।
9: 1998 में आज ही के दिन को राजस्थान की पोखरण में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 सफल परमाणु परीक्षण पूरे किए, जिससे भारत आधिकारिक तौर पर परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया।
10: आज ही के दिन 1846 को संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए ने आधिकारिक तौर पर मैक्सिको के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। युद्ध का कारण टेक्सास का विवादित क्षेत्र था।
9: और दोस्तों, 1647 में आज ही के दिन को चिली में आए एक भीषण भूकंप ने सैंटियागो के लगभग एक तिहाई आबादी को खत्म कर दिया, जिसे इतिहास की सबसे विनाशकारी नेचुरल डिजास्टर्स में गिना जाता है।
10: आज ही के दिन 1830 को एक्यूडोर गणराज्य की स्थापना हुई, जब यह ग्रैंड कोलंबिया से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था।
9: और दोस्तों, 1880 को आज ही के दिन थॉमस एल्वा एडिसन की पहली बिजली चलित ट्रेन का टेस्ट रन हुआ, जो ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। दोस्तों, बातें और भी करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। जेलीफिश का एक प्रकार ट्यूरिटॉप्सिस डॉर्नी अमर मानी जाती है, या उम्र के अंत में अपने शिशु रूप में लौट सकती है, इसीलिए इसे इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है।
1: साथ ही दोस्तों, मानव मस्तिष्क दिन में नहीं बल्कि रात में ज्यादा सक्रिय होता है। नींद के समय दिमाग यादों को व्यवस्थित करता है और जानकारी को स्थायी रूप देता है, इसलिए नींद सीखने के लिए जरूरी है।
0: और दोस्तों, हाउस ऑफ लीव्स किताब को पढ़ना ही एक अनुभव है, क्योंकि इस किताब का टेक्स्ट सामान्य तरीके से नहीं लिखा गया। शब्द उल्टे, तिरछे और अलग अलग दिशा में हैं। कभी कभी एक पेज पर सिर्फ एक शब्द होता है, जिससे डर और खालीपन का एहसास होता है। यह दिखाता है कि साहित्य में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि फॉर्म भी भावनाएं पैदा कर सकता है।
1: द टेल ऑफ जेंजी दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। यह 11वीं सदी में जापान में लिखा गया था, जब यूरोप में उपन्यास की शुरुआत भी नहीं हुई थी।
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुगनू या फायरफ्लाइज अंधेरे में कैसे चमकते हैं? उनके शरीर में ल्यूसिफेरे नाम का एक रसायन होता है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लाइट पैदा करता है। इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं।
1: दोस्तों, क्या आपको पता है, इंद्रधनुष असल में आधा नहीं पूरा गोल होता है। जमीन पर खड़े होने की वजह से हमें इसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए वह एक सेमी सर्कल जैसा लगता है। जब सूरज की रोशनी पानी की बूंदों से होकर गुजरती है तो वह मुड़ती, टूटती और वापस रिफ्लेक्ट होती है। इसी प्रक्रिया से इंद्रधनुष बनता है। ऊंचाई से, जैसे एरोप्लेन से, कभी कभी उसका पूरा गोल आकार भी हमें दिख सकता है।
0: दोस्तों, नेक्रोनोमिकॉन एक काल्पनिक किताब होते हुए भी रियल मानी गई थी। H.P. लवक्राफ्ट ने इसे अपनी कहानियों में बार बार मेंशन किया और इतना वास्तविक विवरण दिया गया कि लोग सच में इसे खोजने लगे। यह उदाहरण है कि फिक्शन रियलिटी को प्रभावित कर सकती है।
1: चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना के प्रमुख बने हैं।
0: लेफ्टिनेंट जनरल N.S. राजा सुब्रमणी CDS नियुक्त हुए हैं।
1: भोपाल मध्य प्रदेश में देश का पहला कार्बन सोखने वाला एग्ली ट्री लगा है।
0: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय टेक्स 2026 लॉन्च किया, जो भारत मंडपम प्रगति मैदान में लॉन्च हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत टेक्सटाइल मेला माना जा रहा है।
1: चलिए दोस्तों, लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, क्या आपको पता है आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में पढ़ाई, मोबाइल, सोशल मीडिया और घंटों बैठकर काम करने की आदत ने युवाओं की लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है।
1: लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक एक्टिव लाइफस्टाइल ना केवल शरीर को फिट रखती है बल्कि दिमाग को भी तेज और खुश रखती है।
0: तो बस इसके लिए सुबह सिर्फ 20 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और मोबाइल का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना चाहिए। दोस्तों, फिट रहने के लिए जिम जाना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ डांस, साइकिलिंग, योग या कोई खेल भी आपको एक्टिव बना सकता है। दोस्तों, स्वस्थ रहिए और हर दिन थोड़ा समय अपनी सेहत के नाम करिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तब आपके सारे काम अच्छे से हो पाएंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी थी लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो अपनी दोस्त प्रियंका बिरवा
0: और रिया को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार जोहार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रमिक लोक। मैं रंजना आपकी दोस्त हाजिर हूँ आपका कार्यक्रम श्रमिक लोक लेकर। और आज हमारे साथ है दीपा। दीपा, तुम्हें भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रंजना, और आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो रंजना, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारतीय अंग्रेजी साहित्य के महान कथाकार आर के नारायण को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए।
0: हाँ साथियों, आर के नारायण की कहानियों का सबसे खास पहलू था उनका काल्पनिक नगर मालगुड़ी, जो वास्तव में भारत के छोटे शहरों और कस्बों का प्रतीक बन गया। आर के नारायण ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत की आत्मा को बेहद सरल और जीवंत ढंग से दुनिया के सामने रखा।
1: उनकी रचना संसार का मालगुड़ी कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि वहां भारत की संस्कृति, रिश्ते, संघर्ष, सपने और आम लोगों का जीवन पूरी सादगी के साथ दिखाई देता था। और जब इस कार्यक्रम की बात आती है मालगुड़ी की, तो ये हमें भी अपने बचपन के दौर में ले जाता है, और हमने भी इस कार्यक्रम को बहुत
0: चाव से देखा है।
1: इस कहानी में कोई सुपरहीरो नहीं है, जो इस कहानी के पात्र हैं वह आम लोग हैं, डाकिया, शिक्षक, छोटे व्यवसायी, साधु। और इस कहानी का एक पात्र है स्वामी, जो शरारती बच्चे हैं, वो भारत के हर कस्बे और हर घर की कहानी कहते हैं।
0: हाँ साथियों, आर के नारायण ने मालगुड़ी में परंपरा और आधुनिकता के बीच जूझते भारत की झलक दिखाई दी है। दक्षिण भारतीय माहौल में स्वामी की शरारतें और चरित्रों की कहानी मानवीय भावनाओं की कहानी बन जाती है। यह भारतीय समाज की व्यवस्था को दिखाता है। साथियों,
1: मालगुड़ी की कहानी ने हर उम्र के लोगों को प्रभावित किया। इसका सबसे बड़ा कारण था आर के नारायण की लेखनी की सरल भाषा। बिना किसी भारी भरकम भाषा के लोगों की भावनाओं को गहराई से व्यक्त करने की उनकी प्रतिभा।
0: और साथियों, यही कारण है कि उनकी कहानियों केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की गई। विदेशी पाठकों में भी मालगुड़ी के माध्यम से भारत को करीब से महसूस किया गया।
1: साहित्य जैसे हमें संसार से रूबरू कराते हैं, वैसे सूचनाएं हम तक पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद साधन है आकाशवाणी। वैसे सिर्फ सूचना कहना सही नहीं होगा, आकाशवाणी सूचना, संस्कृति और मनोरंजन का संगम है।
0: जी हाँ साथियों, आकाशवाणी केवल एक रेडियो सेवा नहीं है, यह देश की आवाज है, जिसने वर्षों से लोगों को जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन से जोड़े रखा है। गांव हो या शहर, आकाशवाणी ने हर वर्ग तक एक अपनी पहुंच बनाई है। समाचारों से लेकर संगीत, नाटक, कृषि कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम और युवाओं के लिए विशेष प्रस्तुतियां, सभी तरह के कार्यक्रम हमें यहां सुनने को मिलता है।
1: आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी विश्वसनीयता। आज भी समाचारों के लिए आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी संजोए हुए है। लोकगीत, संगीत, कवि सम्मेलन और क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं।
0: सही कहा तुमने दीपा। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों से लेकर रेडियो नाटक श्रोताओं के दिल को छू जाते हैं और श्रोताओं की पसंद के गीतों के कार्यक्रम भी लोगों का मनोरंजन करते हैं। ऐसे तो जानती हो पहले ज़माने में हम लोग रेडियो ही सुना करते थे, है ना। जब तक हमारा रेडियो का समाप्त नहीं समय होता था तब तक मैं तो रात को सुनती ही रहती। सारा कार्यक्रम सुनने के बाद ही हम रेडियो ऑफ करते
1: और यह सिलसिला आकाशवाणी के शुरुआत से अब तक जारी है। आज के डिजिटल युग में भी आकाशवाणी ने खुद को समय के साथ बदला है और अब मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यमों से भी लोग अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुन सकते हैं।
0: यानी आकाशवाणी ने परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलने का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यह केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है साथियों, साथ ही समाज को जोड़ने, जागरूक बनाने और सकारात्मक संदेश पहुंचाने का भी काम करता है। हम आकाशवाणी के इस अमूल्य योगदान को सराहें और इससे जुड़े रहें।
1: बिल्कुल रंजना, जहाँ तक जुड़ने की बात है तो आकाशवाणी से जुड़े रहना बहुत आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आकाशवाणी से जुड़े रह सकते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप किसी भी कार्यक्रम के केंद्र का कार्यक्रम सुन सकते हैं।
0: तो दीपा, हमने तो अभी बहुत अच्छी जानकारी दे दी अपने साथियों को आकाशवाणी के माध्यम से। इतनी अच्छी जानकारी दी तो साथ साथ एक गीत क्यों ना सुना दे।
1: बिल्कुल।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: साथियों एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम श्रमिक लोक में, और अब हम अपनी अगली जानकारी की ओर रुख करते हैं। दीपा
5: बिल्कुल, अभी हम विराम में जाने से पहले भी बात कर रहे थे जानकारियों की ही, कि आकाशवाणी के माध्यम से हमें ढेर सारी जानकारियाँ मिलती हैं, तो जानकारी की इस कड़ी में हम एक और जानकारी आज जोड़ने जा रहे हैं।
4: भेंट वार्ता अभी हम सुनाएंगे अपने साथियों को, मनोरोग और मानसिक रोग में अंतर। हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर निशांत विभास, और उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी रेडियो सखी दीपा घोष।
5: साथियों, हम जब भी अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे समझ में एक ही बात आती है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है, पर मानसिक स्वास्थ्य के भी क्षेत्र अलग अलग हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निशांत विभास जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूरोसाइकेट्री और न्यूरोसाइकोलॉजी, इन दोनों में क्या अंतर है?
6: साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान वो विषय है जो जिसमें हम व्यक्ति के मनोविज्ञान की व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ये मेडिकल साइंस का विषय नहीं है। मेडिकल साइंस में जो विषय है वो है साइकेट्री, उसको हम लोग साइकेट्री कहते हैं। आजकल साइकेट्री के लिए हम लोग न्यूरोसाइकेट्री टर्म का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत से न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं ब्रेन के, वो धीरे धीरे हमें पता चल रहे हैं। साइकेट्रिक इलनेसेस क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इनके पीछे का जो न्यूरोलॉजिकल बेसिस है वो हम लोगों को पता चलता है, तो इसलिए हम लोग इसे न्यूरोसाइकेट्री कहते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जो हम सामान्यतः सोचते हैं, करते हैं, उन चीज़ों के पीछे का जो न्यूरोलॉजिकल बेसिस है वो हम लोगों को पता चल रहा है, तो ये एक न्यूरोसाइकोलॉजी है और न्यूरोसाइकेट्री। न्यूरोसाइकेट्री मेडिकल साइंस का विषय है जहाँ मानसिक बीमारियों और मानसिक बीमारियों के साथ जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उनसे हम लोग डील करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी में मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के विचार, व्यवहार और इस तरह की चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ये बेसिकली दोनों में ये एक डिफरेंस है।
5: जी डॉक्टर साहब, न्यूरोसाइकोलॉजी और न्यूरोसाइकेट्री, इस बात को तो आपने बताया, फिर भी आम लोगों की ये राय होती है कि जो भी मानसिक परेशानियाँ होती हैं उन सारे चीज़ों को वो एक ही रूप में देखते हैं, और उसका संभवतः वो अपने सोच के अनुसार उसका एक ही इलाज समझते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, जो न्यूरोसाइकेट्री का जो विषय है और मेंटल डिसऑर्डर, जो अलग तरह की मानसिक बीमारियाँ होती है जो आमतौर पर लोगों को होती है, उन दोनों में क्या अंतर होता है?
6: देखिए, मानसिक बीमारियां जो हैं वो मानसिक बीमारियों के बारे में लोगों के बीच तरह तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत समय से ये भ्रांतियां फैली हैं। पहले जैसे शारीरिक बीमारियों के बारे में साइंस को पता नहीं था, तो जब तक साइंस को पता नहीं था तो शारीरिक बीमारियों के बारे में भी तरह तरह की भ्रांतियां थी कि ये चीज़ ऐसे होता है, जादू टोना होता है, भूत प्रेत होता है, या इस तरह की चीज़ें थी। फिर शारीरिक बीमारियों के बारे में हम जान गए कि कई तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जिनसे शारीरिक बीमारियां होती हैं, तो हमें उनके बारे में पता चल गया। अब जैसे धीरे धीरे हम लोग मानसिक बीमारियों को समझ रहे हैं, तो मानसिक बीमारियों के बारे में जब हम जान रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ब्रेन भी एक ऑर्गन है। ब्रेन भी हमारे शरीर के जैसे दूसरे अंग हैं, हमारा लिवर है, किडनी है, लंग्स है, फेफड़े, ऐसे ही ब्रेन भी एक अंग है और उसमें भी परेशानी

0: होती हैं और उन परेशानियों के पीछे पहले कई बार हम लोग सामाजिक कारण या कई तरह के और कारणों को हम लोग उसके पीछे जिम्मेवार मानते थे, लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग समझने लगे हैं कि ब्रेन के अपने प्रोसेसेस में जो ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स हैं, जो न्यूरो सर्किट्स हैं, उनके अंदर जो परेशानियां होती हैं इसके चलते कई तरह की मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अब उन मानसिक समस्याओं को हम लोग न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स या इसे हम लोग इस तरह से अब समझते हैं।
1: न्यूरोसाइकेट्री का जो विषय है ये पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क से या कहे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति होता है जिसको इससे संबंधित परेशानियां होने लगती हैं, तो इसके क्या लक्षण उसमें दिखाई देते हैं?
0: देखिए, ऐसे तो जितने तरह की बीमारियां हैं, जितने तरह की, ये काफी बड़ा विषय है, कई तरह की बीमारियां हैं। ज्यादातर हम लोग उसे एक तरह से समझते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार बहुत ज्यादा उग्र या उत्तेजित हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि इसे कोई मानसिक बीमारी है, तभी हम लोग कहते हैं। लेकिन मानसिक बीमारियां कई तरह की होती हैं। WHO के हिसाब से मानसिक बीमारियों को दो हिस्सों में बांटा है, जैसे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्याएं। तो डिप्रेशन और एंजाइटी से एक समय में कहीं भी 20% पॉपुलेशन, यानी 100 में से 20 लोग उससे सफर कर रहे होते हैं और उनको ये परेशानी होती है। ऐसे ही नशे की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है और वो भी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक या न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम है। ऐसे ही जो ओल्ड एज में भूलने की समस्या, डिमेंशिया, जो बड़े एज में होता है। बच्चों में जो समस्याएं होती हैं, जिसमें बच्चों का हाइपर एक्टिव होना, ऑटिज्म, बुद्धि का विकास कम होना, इन चीजों को भी हम लोग इसी तरह से समझते हैं और उनको न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं।
1: मतलब हम ये एक बात समझ सकते हैं कि ज्यादातर न्यूरोसाइकेट्री का जो विषय है ये मानवीय व्यवहार से जुड़ा होता है। तो हम लोग, मतलब जब भी किसी के व्यवहार में परिवर्तन हो तो हमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है और उस समय हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना और इसके बारे में आगे जाँच करने की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को जो इस संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले किसी भी तरह के व्यक्ति के ब्रेन में या व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इसे जानने के दो तरीके हैं। एक तो उसकी जो स्पीच है, जो उसकी बात है, और दूसरा उसका व्यवहार है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। इन दो चीजों को हम लोग देख सकते हैं। अगर किसी के भी व्यवहार में अचानक परिवर्तन देख रहे हैं या धीरे धीरे उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है और आप देख रहे हैं कि अपनी रोजमर्रा के कामों को छोड़ के किसी और चीज में वो व्यस्त है, लोगों से कट गया है, या पहले से ज्यादा उग्र हो गया है, या नशे की ओर जरूरत से ज्यादा जा रहा है, तो हमें इस स्थिति में अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए बात करने की कि आपको क्या समस्या है, क्या परेशानी है। कभी भी आरोप न लगाएं, किसी तरह का आरोप न लगाएं, क्रिटिसाइज न करें लोगों को, काफी पेशेंस से, धैर्य से बात सुने कि क्या परेशानी है और मेडिकल हेल्प तुरंत अवेलेबल कराएं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि देर करना कई बार काफी परेशानी का कारण बन सकता है।
1: जी, एक जो सबसे अच्छी बात मुझे समझ में आई और इतने देर में मैंने ये देखा कि इस न्यूरोसाइकेट्री से जो संबंधित विषय होते हैं, इसीलिए इससे संबंधित जो रोगी होते हैं, इनके साथ हमें काफ़ी धैर्य की आवश्यकता होती है। और डॉक्टर साहब, आप आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इस विषय में क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि जैसे शरीर की अन्य बीमारियाँ हैं, ऐसे ही साइकेट्रिक या न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको भी अन्य बीमारियों की तरह ही लें। अगर किसी में ऐसी परेशानी दिख रही है या आपको खुद कोई परेशानी लग रही है, तो तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए जाने में झिझके नहीं, संकोच नहीं करें।
1: यही बहुत बड़ी बात होती है कि लोग झिझकते हैं मानसिक बीमारियों का इलाज कराने में
0: झिझकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने हमें इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी डॉक्टर निशांत विभास ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी मनोरोग के बारे में। तो साथियों, अगर आप सुने हैं तो इनकी बातों पर जरूर अमल करें।

0: अगर किसी तरह के भी कोई मानसिक रोगी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर निशांत ने जानकारी दी और उनसे बातें की थी दीपा घोष ने। और अब इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों, कैलेंडर पर तो हर दिन अपनी एक तारीख होती है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो पूरे देश का भाग्य लिखती हैं। आज 13 मई है। आज के दिन हम सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के उस ऐतिहासिक पल को याद कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं भारतीय संसदीय लोकतंत्र का अभ्युदय।
1: आज से ठीक कई दशक पहले 13 मई 1952 को हमारे देश की संसद की पहली बैठक हुई थी। यह वह दिन था जब भारत ने वास्तव में दुनिया को दिखाया कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन कैसा दिखता है।
0: हाँ साथियों, 1947 में आज़ादी मिली, 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, देश का पहला आम चुनाव। 13 मई 1952 की वह सुबह दिल्ली की सड़कों पर एक अलग ही उत्साह था।
1: संसद का वह पहला सत्र केवल नियमों का किताब नहीं था बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का जीवंत दस्तावेज था। 13 मई 1952 को जिस संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई उसने भारत को एक धागे में पिरोया।
0: हाँ साथियों, संसद वह जगह है जहाँ एक तरफ कन्याकुमारी की समस्या पर चर्चा होती है तो दूसरी तरफ लद्दाख की जरूरतों पर। यहाँ कानून बनते हैं, यहाँ सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी सहमति और असहमति का सम्मान किया जाता है।
1: पिछले 70 से अधिक वर्षों में हमारी संसद ने कई ऐतिहासिक कानूनों को जन्म दिया जिसने हमारी सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदल कर रख दिया।
0: और आज जब हम अभ्युदय यानी इस उदय को याद करते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है।
1: आज की युवा पीढ़ी के लिए 13 मई का संदेश यही है कि लोकतंत्र एक उपहार है जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से संजोया है। इसकी गरिमा को बनाए रखना अब हमारे कंधों पर है।
0: हाँ साथियों, और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं एक और जानकारी की ओर।
1: दोस्तों, अब हम अपनी जो अगली जानकारी है वह है करियर मार्गदर्शन और रोजगार का डिजिटल मंच। साथियों, अक्सर हम प्राइवेट जॉब पोर्टल्स के चक्कर काटते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हमारे लिए एक बहुत ही शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है।
0: जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके जो डॉट प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको क्लिक करना होगा www.ncs.gov.in। यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ नौकरी खोजने वाले, नौकरी देने वाले, करियर काउंसलर्स और स्किल ट्रेनिंग देने वाले सब आपको एक ही छत के नीचे मिलते हैं। चाहे आप फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस्ड, यह मंच आपके लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है।
1: अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अलग क्या है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। इसके 5 बड़े फायदे। पहला, पंजीकरण, यह बिल्कुल मुफ्त है, बस आधार या किसी आईडी से खुद को रजिस्टर करें। दूसरा है स्किल मैपिंग, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको जॉब के सुझाव मिलते हैं। और थर्ड है लोकल सर्विस, यहाँ सिर्फ कॉरपोरेट जॉब्स ही नहीं बल्कि प्लम्बर, कारपेंटर और अन्य स्थानीय सेवाओं के लिए भी पंजीकरण किया जाता है।
0: और साथियों, एक और है वीडियो प्रोफाइल, आप अपना वीडियो रिज्यूमे भी डाल सकते हैं ताकि नियोक्ता आपको बेहतर समझ सके। साथियों, आज के दौर में जब सब कुछ डिजिटल है तो आपका करियर पीछे क्यों रहे।
1: अवसर सबके पास आते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो सही समय पर सही मंच का चुनाव करता है। आपके सपनों को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है तो आज इसी डिजिटल मंच पर जाएं और अपना भविष्य संवारें। रंजना, ये एक बहुत ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका जो जरूरत है वो ऐसे सारे लोगों को है जो आज जॉब ढूंढ रहे हैं।
0: हाँ। और दीपा, हम एक बार और अभी अपने साथियों को ये बता दें, वो अपने जो ढूंढने के लिए उनको परेशानी ना हो, तो साथियों आप क्लिक करेंगे www.ncs.gov.in gov.in। यह सिर्फ आपका एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक

0: आपका पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी तरह की जानकारियाँ जो है वो आसानी से मिल जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: और आज के समय में अगर हमारी सरकार हमें इतना सहायता दे रही है तो किसी की बेरोजगारी किसी के पास नहीं आ सकती है ना,
1: बिल्कुल
0: रोजगार हर कोई के पास आएगा, बस आप थोड़ी अपने आप को निखारें, बाहर आएं, हुनर है तो बिल्कुल अपने आप को घर में बैठने ना दें, है ना।
1: सरकार प्रयास कर रही है, जरूरत है कि हम उन प्रयासों में भागीदार बने और उनसे जुड़े, और अगर इस तरह के कार्यक्रमों से हम जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे रोजगार के जो अवसर हैं वो हमारे सामने होंगे। तो रंजना, बातें तो काफी हो गई,
0: हाँ
1: तो क्यों ना हम अपने श्रमिक साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवाएं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: और इस प्यारे से गीत के साथ ही समय हो चला है अपने सभी साथियों से विदा लेने का। तो आज के लिए अपनी दोस्त दीपा
1: और रंजना को दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार थोड़ी देर में।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हुए राज्यपाल ने लोक भवन में कारकेड में वाहनों की संख्या घटाकर केवल 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू को 5-5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाया गया, जहां मंत्री और विधानसभा कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दुमका जिले के सालतोला गांव में 26 किसान सामूहिक खेती के तहत 6 एकड़ भूमि पर करेला, तरबूज और भिंडी की खेती कर रहे हैं। क्लस्टर आधारित खेती मॉडल से किसानों ने लागत कम की है और आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में देसी कट्टा लहराकर होटल संचालक से विवाद कर रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: गाछ लगाओ गाछ बचाओ खेती बारी कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के सुनैना बहन बटले जमे जमे जोहार और भाई राउर के हूँ जोहार।
1: हाँ सब किसान भाई बहन मन के संजय साहू बटले भी बहुत बहुत जोहार।
0: और कहो का हालचाल है?
1: हाल चाल तो नगदे दीदी, एखन देखो रोज दिन कर स्थिति ये है कि पहल पहर रौद करेला और सेकेंड बेरा हवा पानी बरसात लगा देवेला।
0: बढ़िया है नहीं संजय भाई, देखो एखन मौसम जे हमरे कर संगे है तो हमरे के गर्मी कर पता नहीं चलत है नहीं तो बाप रे अगर पानी नहीं आता खोल तो भाई के थैया कर देतलक नहीं, लेकिन एखन गर्मी कर पते नहीं चलत है पानी कर वजह से नहीं।

0: जेठ का रौद का कहल जाए,
1: का
0: इतना
1: कहल जाए,
0: जोर
1: सही
0: से
1: बात
0: रहेला
1: है,
0: नहीं। अरे सो तो दू गो जेठ है कहे ना, तो
1: बताओ।
0: बहुत जोर से इस बार गर्मी कर मतलब गर्मी रही, लेकिन एखन पानी मन आवत है तो तनिको राहत बुझाए लागल है।
1: ऊपरे वाला भी हमारे कर संगे
0: हाँ सही
1: है।
0: कहा
1: कल जा
0: जे।
1: सकेला नहीं सेल नहीं एकदम रह रह के, मतलब बीच बीच में पानी भी आवत है, मौसम भी ठंडा ठंडा, तो बढ़िया लागत है नहीं तो। लेकिन हमारे कर किसान भाई मन के ठंडा गरम बरसा सब बेरा वो मन के कहाँ आराम है,
0: सही कहा
1: काम
0: थे,
1: काम
0: सही कहा थे
1: काम।
0: दीदी। देखो एखन आप तो कहे लग है जेठ तो दू गो है ना, तो अगर एक एक जेठ रहते तो सिरात लगा सब आदमी अपन बीड़ा झीरा में लाग जात
1: लाइक
0: लाए।
1: जात ले।
0: आ दिसन के
1: हाँ
0: कन देखे लाएगी सब किसान भाई बहन मुने अपन अपन खेत मन के जोतवाए लागल है आ धान कर बीजा लगाए
1: हाँ
0: ले।
1: ये चलते कि एक जब तक खेत के तैयार नहीं करवे नहीं तो अगला फसल कैसे लगावे नहीं तब। से चलते वो मन भी अपन तैयारी में रहे ना कि चल अब तनि सुन बरखा मन के देख लेवे ना, वही हिसाब से मन अपन काम का तैयारी करे ना। लेकिन संजय भाई काम तो खाली खेती बाड़ी कर संगे संगे वो मन कर और भी काम होवे ला। से तो देखो एक ठो किसान भाई के देख ली बहुत परेशान एकदम भागम भागी भागम भागी। एखन डहर में भेटा रही ऊपर से आवत रही तो हे जात है चिन्हार चिन्हार दिशा थे, तो हम लोग के है के तो देखा थे तो बगले कर रहा छुआ है कि तुमने कहाँ जाती से दादा, तो कहते देख पुने दीदी से एगो कार जून बनवाए है और ते हमरे चक्कर लगा थी, तो हमने का कार्ड दादा, तो कहते वही किसान क्रेडिट कार्ड।
0: जी
1: हाँ
0: किसान
1: तो
0: क्रेडिट कार्ड है
1: हाँ तो वो भी
0: दीदी।
1: बहुत जरूरी वाला हो जाए है बनवा के खान का डेट में है कि नहीं, और उकर फायदा भी हमरे को उठाए के चाहिए। अगर सरकार बट ले ये सब चीज देवल जाते तो हमरे के फायदा उठाए है नहीं तब। लेकिन सबसे पहले हमें ले हमरे के जाने का दरकार है कि किसान क्रेडिट कार्ड का है कैसे के। तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC भारत सरकार का एगो महत्वपूर्ण योजना है जे किसान मन के खेती पशुपालन और मछली पालन ले मतलब बहुत कम ब्याज में 4% वार्षिक कर रियायती दर में 5 लाख रुपया तक कर सस्ता ऋण उपलब्ध करवाएला। और ये योजना 3 लाख तक कर ऋण में 2% सब्सिडी और समय सिरे पुनर्भुगतान करल से 3% अतिरिक्त छूट भी देवेला, जेकर से ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% हो जाएला। तो देखो एक विशेषताएं भी हमरे के जाने के चाहिए नहीं तब। जैसे हो गया ऋण सीमा, तो बजट 2025-26 कर अनुसार ये KCC में अब 3 लाख कर बजाय 5 लाख रुपया तक कर लोन लेवल जा सकेला। सेहतर ब्याज दर है सामान्य तौर में 9%, लेकिन 2% सब्सिडी और 3% समय सिरे भुगतान छूट कर संगे प्रभावी दर 4% है। सेहतर एक वैधता है 5 साल तक कर रहेला नहीं तब। और देखो ने एकर फायदा भी बहुते फायदा है।
0: हाँ ये किसान क्रेडिट का है दीदी कि जैसे कि
1: हाँ
0: गांव घर के किसान मन के मिल जाएला, तो जैसे केकरो से लोन लेब नहीं तो मिनिमम 10 से 15% कर ब्याज रहेला, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड में मात्र 4% लागेला।
1: हाँ वही
0: आ
1: चीज
0: के
1: तो
0: एक समय सीमा के अंतर्गत तो जमा करे के रहेला,
1: जमा।
0: और ये किसान मन के मतलब एक का कहा बैकबोन मतलब बहुत बढ़िया मदद मिलेला एकर से। जैसे कोई किसान के कोई समय में कुछ घट गलक बढ़ गलक तो उकर से मैंने पूरा
1: पूर
0: करेना।
1: से पूरा कर सकें इसे सस्ता कर्जा कह दे। सामान्य ब्याज दर जैसे 7% है, लेकिन समय से भुगतान करल से 3% कर सब्सिडी मिलेला, जेकर से प्रभावी ब्याज दर खाली 4% रह जाएला। और बिना गारंटी लोन मतलब कि 1.6 लाख रुपया तक कर लोन लेवे के लिए कोनो जमीन मन के गिरवे मतलब बंधिक रखे नहीं पड़ेल कर में है कि नहीं। और ई कार्ड ATM जैसन काम करेला, किसान भाई मन जरूरत कर अनुसार पैसा मन निकलाए सके ना और फसिल बेचल पाछे जमा कर सके ना। और लोन का उपयोग खाली बीज खाद ले नहीं बल्कि कटाई कर बाद कर खर्चा घर के जरूरत और कृषि उपकरण कर मरम्मत ले भी करल जा सकेला। और कार्ड धारक के किसान दुर्घटना बीमा योजना कर लाभ मिलेला, जेकर से मृत्यु या विकलांग में कवरेज मिल सकेला। और जानेला इकर आवेदन अब जन समर्थन पोर्टल कर माध्यम से भी ऑनलाइन करल जा सकेला, जे बहुत एकदम सरल उपाय है नी।
0: किसान मन के ये जे KCC है
1: हाँ
0: एकर से
1: हाँ
0: जुड़े के चाहिए हर किसान मन के,
1: हर
0: और एकर
1: किसान मन के
0: लाभ के लेवे के चाहिए।
1: तब
0: और जे नज़दीकी बैंक है चाहे जे हमरे कर पंचायत में जे कृषक मित्र हैं उनकर
1: हाँ
0: से संपर्क करे के चाहिए, काल
1: एकदम
0: की एकर उपाय उहे मन करे ना, और हमरे का जे काम है उके उन्हें पूरा कर दो है ना, तो
1: एकदम।
0: एकर लाभ हर किसान भाई बहन मन के लेवे के चाहिए।
1: तो किसान भाई मन कर देखो इतना काम खेती बाड़ी कर संगे संगे इहो सबके देखे जरूरत मतलब एक जरूरी है। लेकिन संजय भाई हमरे गोड़ तो
0: नहीं है सिराई।
1: नहीं है सिराए करते रहब, लेकिन कार्यक्रम के आगे भी बढ़ाए है तो चलो एगो हमरे जानकारी करी ला प्रश्नोत्तरी लागे। संरक्षित खेती आज कर आवश्यकता काते रह सके।

0: बताते हैं डॉक्टर अवनी कुमार सिंह और इनकर से बातचीत कर रहे हैं एस के लाल।
1: किसान साथियों, आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आईसीआर पलांडू के हेड डॉक्टर अवनी कुमार सिंह। अभी अभी आपने यहाँ पदभार ग्रहण किया है और आपके संरक्षण में आईसीआर काफ़ी तरक्की करेगा और नए नए यहाँ प्रयोग किए जाएंगे और यहाँ के किसान काफ़ी लाभान्वित होंगे। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी क्या प्राथमिकता है और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि संरक्षित खेती क्या है और ये आज की बहुत महती आवश्यकता है। डॉक्टर अवनी सिंह साहब, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने अभी हाल में ही यहाँ आईसीआर प्लांडू का पदभार ग्रहण किया है, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामना और बधाई।
2: और मैं भी आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
1: जी। और उम्मीद है कि आपके आने से यहाँ एक नया ढंग का वातावरण मिलेगा, खेती के क्षेत्र में किसान जागरूक होंगे और नए नए तरीके से खेती करेंगे और नए वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या प्राथमिकता है पूरे प्रदेश के लिए।
2: सबसे पहले तो हम पूरे रांची और झारखंड के किसान भाइयों को जोहार बोलते हैं। प्राथमिकता की बात करें तो उद्यान की फसलों को हमारा प्रयास रहेगा अधिक बढ़ावा दिया जाए, उनकी प्राथमिकता ज़्यादा रहे, जिसमें हम फलदार वृक्षों में जैसे आम है और आपका लीची है, अमरूद है, कटहल है, संतरा है, इन जितने भी फलदार वृक्ष हैं जो रांची में व्यवसायिक रूप में अपनाए जाते हैं, उनके पौधोत्पादन की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा मेरी रहेगी। उसके साथ साथ मैंने यहाँ देखा सब्जियों के बीज हैं प्राइवेट कंपनियों के बहुत महंगे मिलते हैं, तो हमारी जो प्रजातियाँ हैं, अच्छी प्रजातियाँ हैं जो प्रतिरोधी हैं बारिश के अगेंस्ट, जो वर्षा में रोग लगता है उसके प्रतिरोधी प्रजातियों को, जो हमारे यहाँ टमाटर की हैं, मिर्च की हैं, कद्दूबर की हैं, जितनी भी प्रजातियाँ हैं, उनका भी बीज उत्पादन करके किसानों के घर घर तक पहुंचाने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे पास जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके साथ मिल करके हम किसानों के खेत में, किसानों के घरों तक नई नई तकनीकों को पहुंचाने का प्रयास करें। बारिश की आवश्यकता सब्जियों में नहीं है, बारिश की आवश्यकता हमारे जो बहुवर्षीय पेड़ हैं या हमारे जो सीरियल क्रॉप हैं उनमें ज़्यादा होती है, लेकिन सब्जियों में कम पानी की आवश्यकता होती है, बारिश में वो ख़राब हो जाती हैं। तो बारिश के समय में अगर हमारे पास पाली हाउस हो और किसी किसान के पास अगर 1000 वर्ग मीटर का पाली हाउस हो, तो इस समय बेमौसम टमाटर, बेमौसम शिमला मिर्च, बेमौसम खीरा, बेमौसम ककड़ी, बेमौसम नर्सरी उत्पादन करके लगभग 2 से 5 लाख रुपया कमाई कर सकता है। ये सबसे बड़ा लाभ है संरक्षित खेती का। संरक्षित खेती की यहाँ हमें से ज़्यादा यहाँ छूट है, अर्थात हम साधारण भाषा में कहें कि अगर आपका 100 रुपया लगता है उसमें 70 रुपया भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर देंगी, 30 रुपया सिर्फ आपको लगाना पड़ता है। तो इस तरह से भी यहाँ सबसे बड़ी इस खेती को अपनाने में लाभ है कि इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आपको सहयोग करती हैं। इकट्ठा करें, उस पर टपक सिंचाई लगाएं, उस टपक सिंचाई से पाली हाउस में सिंचाई करें, उसके साथ खाद भी दे सकते हैं अगर जैविक खेती करते हैं, या आप जो प्राकृतिक खेती करते हैं तो केवल पानी देना होगा। तो इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती है टपक सिंचाई पद्धति प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में, और पाली हाउस भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा किसान भाइयों, अगर एक पाली हाउस है 1000 वर्ग मीटर का, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 1 हेक्टेयर सब्जी लगाते हैं टमाटर, जितना उत्पादन करके बेचेंगे उतना यहाँ 1000 वर्ग मीटर से उत्पादन करके बेच सकते हैं, अर्थात यहाँ आप 9000 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर में 10000 वर्ग मीटर होता है, 9000 वर्ग मीटर ज़मीन को बचा करके दूसरे कामों में ले सकते हैं, धान ले सकते हैं, मड़ुआ ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मैं एज अध्यक्ष HCR प्लांडू, मैं अपने किसान भाइयों को आश्वासन देता हूँ कि संरक्षित खेती का जल्द से जल्द हम प्रसार प्रसार और प्रदर्शन करके हम आपके घर घर तक पहुँचने का प्रयास करेंगे और सब्जी उत्पादन में, पौध उत्पादन में हरित क्रांति का सृजन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनसे मैं जुड़ करके उनके खेत में उनके पाले हाउस में खुद जा करके मॉनिटरिंग करके अपनी तरफ से पौधा दे करके नई नई वैरायटियों का खुद डेमोंस्ट्रेशन कराऊंगा, उनके खेत में वहीं सिखाऊंगा और उसके साथ साथ समूह बना करके भी इस क्रिया को और

0: तकनीक को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो एक ही तकनीक पशु पक्षी का प्रकोप, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप, ये किसानों को बहुत ज़्यादा प्रयास घायल कर रहा है और नुकसान कर रहा है। इस सब का सलूशन एक ही, संरक्षित खेती। अगर हम ऐसे कहें सामान्य भाषा में, गांव की भाषा में अपने, कि 100 समस्या एक निदान, उस निदान का नाम है संरक्षित खेती।
1: हम समझते हैं कि आपके मार्गदर्शन में संरक्षित खेती को बढ़ावा मिलेगा और झारखंड बहुत आगे बढ़ेगा। डॉक्टर अवनी कुमार सिंह, हेड ICR प्लांडू, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामना और बधाइयाँ, और आप इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: तो एखन हमरे सुनत रही संरक्षित खेती आज की आवश्यकता, इके बतात रहे अवनी कुमार सिंह और इकर से बातचीत कर रहे इसके लाल। तो दीदी, आज कर का जुगाड़ है पानी बरखा कर?
3: जुगाड़ तो रबरे जैसन कहो रबरे तो जुगाड़ कर ही देखो थी तो का विचार है बताओ?
2: एक आयो गीत सुनाओ।
3: अच्छा, गीत सुनाओ तो चलो तब हो जाए तनी मनी, लेकिन भागे के नखे टूटल फूटल आवाज में कृष्ण गुनगुनाते है कि नहीं?
2: जरूरी है।
3: चलो

0: वाह, बहुत खूब दीदी। और हमरे के कुछ दिन अगर इंतजार है करवा दे, हमरे फिर रोपा खेत में आ जाब नगद। बहुत
1: एकदम।
0: बढ़िया।
1: अरे रे पानी बरखा कर बोल दिली तो हमके भी एकदम पानी में, जैसे हमरे जायत रहिए गांव बटे, तो जहाँ रोपा पकर बेरा रहत रहे सीधे एकदम जानत ही नहीं जानत ही एकदम सीधे घुस जात रही बीड़ा उखड़ाए। अब तले शुरू होत रहे मन गीत मने
0: अच्छा
1: हर
0: दीदी,
1: बेरा कर
0: हमरे तो रिझ रंग करते रह, और
1: एकदम एकदम
0: श्रोता मन लागिन और का जुगाड़ है।
1: बहुत जुगाड़ है। लेकिन सबसे पहले एगो हमरे श्रोता मन एगो जानकारी है, सूचना है। ये रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची बटले 18 से 25 वर्ष कर युवा मन ले कृषि और कृषि संबंधित निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करल जाते। ग्रामीण युवा मन के स्वावलंबी बने के लिए आधुनिक उन्नत कृषि विज्ञान तकनीक बटले समेकित खेती, मधुमक्खी पालक, खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमिता विकास, लाह उत्पादक, मशरूम उत्पादक, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक उत्पादक, मत्स्य पालन, माली मुर्गी मनकर स्वास्थ्य प्रबंधन, गोपालक, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रेशियन, वेल्डिंग, सुपरवाइजर प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध है। ई आवासीय प्रशिक्षण निःशुल्क है। हर महीना कर 1 तारीख से नामांकन शुरू होवेला। अनुसूचित जनजाति कर अभ्यर्थी मन ले प्रशिक्षण और आवासीय सुविधा पूर्णता निःशुल्क है। आवश्यक दस्तावेज है आधार कार्ड, जन्म और जाति प्रमाण पत्र और फोटो। अधिक जानकारी लिए संपर्क करो रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची। अपन कौशल के निखराओ, आत्मनिर्भर बनो। तो रहे सूचना
0: किसान हमरे कर किसान भाई बंधु मन के ध्यान देवे के चाही कर में।
1: एकदम।
0: और
1: और का जानकारी मने है भाई?
0: तो हम

0: हमरे आगे एक भेंट वार्ता सुनी ल बकरी पालक किसान रामदेव कुमार और इकर से भेंट कह रहे हैं सुकेश कुमार महतो।
1: एकदम
2: जोहार श्रोता किसान भाई बहन मन, आज हम एक किसान कर पास पहुँची जे बकरी पालन करेला और बकरी पालन तो करेला ही संगे संग खेती बाड़ी भी करेला और बकरी पालन कर काम करके अपन आजीविका के भी चलाएला, घर द्वार के भी चलाएला, जेकर से छुआ पुता मन कर पढ़ाई लिखाई और घर का खर्चा भी निकलाएला ताकि उकर अतिरिक्त आय भी हो सकेला। तो चलू हमरे बन जानी ला एक किसान है हमारे सामने, उकर से परिचय करीला। जोहार
3: जोहार भाई,
2: अपन परिचय बता देऊ।
3: हमार नाम है रामदेव कुमार, गांव है घासीबारी, थाना है कर्रा, जिला खुटी है।
2: हाँ तो रामदेव भाई की का काम मन करीला एखन?
3: एखन तो हम खेती बाड़ी और साथे साथे बकरी पालन में ही लाग जाही।
2: ओ बकरी पालन में? हाँ। चलते बकरी चराए के लाएगी?
3: हाँ बकरी चराए थी।
2: अच्छा तो खेती बाड़ी मन करी ला कि नहीं?
3: खेती बाड़ी करी ला टाइम सिरे, तले टाइम बचेला तो उसमें बकरी पालन भी।
2: पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है?
3: हमार पढ़ाई लिखाई मैट्रिक पास तक करके छोड़ी।
2: और आगे तक पढ़ाई नहीं कर ली?
3: नहीं तो सा घर में प्रॉब्लम हलक आर।
2: खेती बाड़ी करे संगे संगे ये बकरी पालन में भी रोरे काम में जुड़ल है?
3: हाँ।
2: अच्छा बकरी पालन कब से शुरू करी थी?
3: बकरी पालन कम से कम 8-10 साल हो गलक।
2: 8-10 साल से एखन बकरी पालन करत थी। एखन जे चरत हैं ये छगरी मन रोरे करे कहे?
3: हाँ कम से कम 30-35 तो हाँ। एखन
2: जे दिखाई देवत हैं से छगरी मन रोरे करे?
3: हाँ हमरे के।
2: अच्छा कितना हो भाई?
3: कम से कम 35 तो हम एखन हमार।
2: अच्छा 35 गो एखन बकरी मन है तो उकर में खसी भी है?
3: हाँ खसी है 15 ठो।
2: खसी 15 है? हाँ, खसी
3: छोटा मैंने 8-10 ठो है बड़ बड़ और छोटा है 5 ठो।
2: अच्छा तो उ खसी मन का करी ला?
3: खसी मन के एक तो व्यापारी मनावे ना घरे में ये तो जलटना में लेके बेचीला व्यापारी मन से।
2: अच्छा जे जैसन उकर मांग होएला जैसे शादी ब्याह मन में भी इन्हें तो बहुत अधिक खसी मन कर मांग होएला तो का शादी ब्याह कर जो करे को लाओ है ना से मन से बेचीला?
3: हाँ वो मन आ जाना कभी तो शादी वाला घर में आ जाए ना और शादी का सीजन आवेला तो मुनाफा थोड़ा सा अधिक होएला।
2: अच्छा हाँ ये बात तो नगद कहली कि शादी कर जे लगन बेरा में खसी कर, हाँ खसी कर मन मांग अधिक हो जाएला तो उस समय में बेच ले। हाँ, तो का अधिक मुनाफा हो?
3: मुनाफा हो।
2: अच्छा अच्छा ये बकरी पालन करे कर प्रेरणा कहाँ से लग?
3: बकरी पालन पहले तो कमे रहा निकलू के देखते देखते बढ़ते गए हर हम लोग थोड़ा सा मोबाइलों में देखते गली तो
2: मोबाइल वन में देखते गली उकर बाद में बकरी पालन कर
3: चालू कर ली।
2: हाँ तो शुरुआत में कै गो तक
3: अखन बढ़ते हैं?
2: 4 गो से शुरू कर रही और वो एखन बढ़ के करीब 35 गो तक हो जा है।
3: हाँ।
2: बात रहलक कि उकर में जे बेचे के वाला कौन खसी मन के बेचे?
3: हाँ खसी मन के बेचते जाइला राधे मने वो पोठिया मन रहना से खो बेच दईला।
2: अच्छा जोर समय वो हमन के बेचीला। अच्छा ये बता दो रामदेव भाई कि जब बकरी पालन कर रही तो ये मन कर कैसन व्यवस्था कर रही?
3: बकरी पालन कर रही तो अगर मैंने राखे कर पूरा व्यवस्था करल है कि वो जे गुहार बने ला नहीं।
2: हाँ,
3: साफ सुथरा सब करल जाला सुबह शाम और चराल में भी उनके ध्यान देखेला सुबह शाम चराई ला आनी ला।
2: हाँ,
3: तो और 12 बजे पानी भी पिया खोला।
2: चरवाही जगह है वो कहाँ ले जाए?
3: कल भी ले जाइला और पानी उनी बरसात का दिन में हो जाला तो के बनाए दही खाए के लिए कुटी चोकर भी दे ला ऊपर से खा लेना।
2: बकरी मन भी कुटी चोकर मन खाए ना?
3: हाँ तो बरसात में चरा के लेकिन नहीं पाइला से समय चोकर मार कुटी दे दी।
2: अच्छा तो जैसे इमन घास उस खाए ना कि नहीं?
3: घास उस खाए ना, घास होला से घास खाए ना और जंगल में भी ले जाइला जंगल में डोरा खाए ना और घास चारा ना।
2: मन ले जे गुहार बना ही का साफ सुथरा हवादार है?
3: हाँ साफ सुथरा उसके रोड गुहार के नमी नहीं रह चाहिए उकर बैठे के लिए कोई बनाल जाला पिंडा उंडा कोई तख्ता उकस चल साफ सुथरा अच्छा से रहे ना।
2: जब छोटा बच्चा होए ना वो मन का उस समय तो देखभाल करे की जरूरत पड़ जाएगा तो कैसे करेला?
3: छोटा बच्चा के तो खाँचा में हमने ढापी ला रात के काहे कि ठंडा का दिन रहला तो ओकर में मैं

0: যায় না, ওকে সে আমরা খাঁচা আমি ঢাইপ দিইলা পাঠরু ভরিকে।
1: হ্যাঁ
0: তা সে শোভা মুক্তকে মায়ের নিকলাইলা খটিলা, ওকে বাদ মে দুধ দুধ পিয়াইলা, আর চড়াই তো ছটকা সে মানি লেগে লেগিলা, ওকে ঢাইপ দিইলা,
1: মানে
0: ফেল যায় না সবকে।
1: एगो के अगर बकरी के बुखार हो जाला तो संक्रमित रूप से हो के सबके मन पकड़ ले,
0: सबके सर्दी खांसी बुखार पकड़ जाला,
1: तो उसन स्थिति में का करीला
0: अथी डॉक्टर मन के बोलाइला और सुई बन देवाइला और
1: पीपीआर का वैक्सीन डॉक्टर मन के बुलाए के टीका दिवा दीला,
0: है नहीं?
1: और टीका दिवाल के बाद में उमन स्वस्थ रहे ना?
0: हाँ स्वस्थ रहे ना, उनका जल्दी बुखार नहीं पकड़ नहीं पा रहेला सर्दी बुखार।
1: जैसे खसी कर बात होला तो रहे ना?
0: हाँ स्वस्थ रहे ना, उनका जल्दी बुखार नहीं पकड़ नहीं पा रहेला सर्दी बुखार।
1: जैसे खसी कर बात होला तो खसी
0: रहे ना, उनका जल्दी बुखार नहीं पकड़ नहीं पा रहेला सर्दी बुखार।
1: जैसे खसी कर बात होला तो खसी तैयार होए में कितना दिन समय लगेला?
0: खसी के कम से कम 2.5 साल लगेला तैयार होए में।
1: और
0: वहीं पर ले जाइला, व्यापारी बहुत आवे ना ना, थका कर कोई सुविधा नहीं, हमरे भी जानी लगी का के जी खा रू सर से।
1: चरवाही में कोई आदमी मन के भी जरूरत पड़ जाएगा?
0: चरवाही तो एक जन डेली जाए खोला,
1: एक आदमी के वो बकरी पालन करत ही तो एक आदमी के ऊकर में हमेशा साथ में रहे जरूरी है, मन ऊकर ले खाना पीना दाना और चरवाही के लिए एक आदमी हमेशा ऊकर ले लागल रहे,
0: हमेशा लगाना चाहिए।
1: अच्छा तो जैसे खेती बाड़ी होला बरसात का दिन होला उसन स्थिति में बकरी मन के क्या मन व्यवस्था करेला?
0: वो खेती बाड़ी समय तो खेती बाड़ी कर ले लिया, टाइम से उके चरा के ले जाइला, और अगर सगरे पानी अगर आ जाला तो के कुटी चोकर देवल जाला घरे में रखल जाला।
1: ये सब के भी कुटी चोकर के भी मन बढ़िया से खा लेना?
0: हाँ बढ़िया से खा लेना।
1: आज कल जैसे गर्मी का दिन है रामदेव भाई, तो ईसन स्थिति में मन कर चारा कर व्यवस्था
0: गर्मी का दिन में
1: जंगल में मन विभिन्न तरह का जो
0: विभिन्न तरह का
1: पौधा है ओकर पत्ती मन के खा लेना, कल जाए उखे चर
0: घास मन बाढ़ जाए उखे चर था यार पत्तियों कहला।
1: अच्छा ईसन जी सालों भर खियाल जा सकेल, जब समय आ जाएला 2 साल 2.5 साल के बाद मुके बेचीला, ठीक है, और उ बीच में रौरे मनु के तैयार करीला बढ़िया से खियाए पियाए के, तो क्या मुनाफा हो जाला बढ़िया?
0: हाँ बुरा मुनाफा हो जाला, खेती बाड़ी से बगरा होला,
1: मैंने खेती बाड़ी से भी कर में बकरी पालन से बढ़िया मुनाफा होला। अगर 20-25 के जी कर अगर खसी है तो वो कितना तक में बेच सकेला?
0: कम से कम 15,000 देना।
1: अंदाजा हो जाएगा कि ई के कितना रेट लगाए खा सके?
0: हाँ हो जाला, काय के जी करने से सब पाते
1: भाई। बकरी पालन करे थी ताकि रोरे कर अतिरिक्त आय भी हो जाला, जेकर से छुआ मन कर पढ़ाई लिखाई में भी ये सहायक होला, और किसान भाई बहन मन है जे मन बकरी पालन करे चाहे ना वो मन के का संदेश दे सके?
0: हमार बस यह संदेश देव थी कि हम बकरी पालन से छुआ के पढ़ाती या घर भी कर सकें ना,
1: और वो अपन मुनाफा कमा सके,
0: मुनाफा कमा सके ना।
1: समय रामदेव भाई समय दिली इकर ले और जे जानकारी दिली इकर ले बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
0: जोहार।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: तो चलो तब लागले लागल काम कर संगे ना रिज रंग भी होवे चाहिए नहीं भाई, एक ठो गीत हमरे सुनी ले कृषि गीत जेके गाए हैं मुकुंद नायक और संगी मन।
5: सुनहु किसान भैया।

0: तो संजय भाई हमरे कर गीतकर हे गीतकर संगे खेती बाड़ी कर बेरा तो सिरात है एक निसरा
1: हाँ।
0: गिलक और अब बेरा है हमरे कर हमारी दुनिया यानी कि घरनी सभा कर। तो एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में और सब बहिन मन के भी जोहार है और
1: हाँ,
0: प्रौरे
1: सब
0: कर भी स्वागत है एक बार।
1: पुनः सब कोई कर सब कर जोहार।
0: और देखो आज तो खास दिन लागे एकदम हमरे कर महिला बहिन मन करनी काल के घरनी सभा
1: घरनी
0: है कि
1: सभा
0: नहीं।
1: है के।
0: तो सहेल कहा थी कि महिला मन कर एकदम सम्मान करूँ नहीं तब
1: हाँ, नगद कहाँ
0: मतलब
1: थे
0: हाँ
1: दीदी?
0: महिला मन कर सम्मान करे के एगो विकसित और स्वस्थ समाज कर आधारशिला है के है कि नहीं। और इकर मतलब है इनकर विचार निर्णय स्वतंत्रता और शारीरिक गरिमा के सर्वोच्च प्राथमिकता देवे के और उनके पुरुष मन कर सम्मान अवसर प्रदान करे और हर क्षेत्र में उनकर भागीदारी के बढ़ावा देवे के नहीं तब।
1: हाँ, महिला समाज कर शक्ति संवेदना और संस्कृति कर आधारशिला होवेला। एक परिवार समाज और राष्ट्र कर निर्माण में महिला मन कर महत्वपूर्ण भूमिका होवेला।
0: एकदम एकदम देखो और महिला मन कर सम्मान करे कर तरीका भी है कि नहीं। जैसे हो गया घर और बाहरे दुयो जगह महिला मन के पुरुष कर बराबर मान के उनकर अधिकार और समान वेतन कर समर्थन करो सेहत और उनकर राय के महत्व दे और उनकर विचार के गंभीरता से सुनो बिना स्वार्थ कर है कि नहीं। और उनकर काम में रवरे सहयोग करो
1: नगद कहते दीदी, आज महिला मन शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, साहित्य और प्रशासनिक जगत जैसन हर क्षेत्र में अपन प्रतिभा कर परिचय देवे लागल हैं।
0: एकदम देखो नी हमरे कर महिला कहाँ न खाए पुरुष भाई मन कर कंधा से कंधा मिला के हर क्षेत्र में है
1: नगद कहते दीदी,
0: तो
1: हमरे के महिला मन कर भावना, विचार और अधिकार कर आदर करे के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल तबे तो हमरे कर महिला मन आगे बढ़बे समाज से लेके देश कर नाम रोशन करबे गढ़बे अपन ये नहीं तो
1: घर हो या ऑफिस हर जगह उमन के सम्मान और समान अवसर देवे के चाहिए के खूब
0: बिल्कुल
1: कम या बगरा नहीं बुझे के चाहिए।
0: तब
1: और बेटी मन कर शिक्षा, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान के बढ़ावा समाज कर विकास ले एकदम अति आवश्यक है।
0: तब
1: कि जब तक जैसन हमारे पुरुष के जैसन सम्मान देवे वैसन हमारे के बेटी छुआ हो गलग चाहे महिला मन के सब कोई के समान अवसर
0: एक
1: देवे के
0: नजर से
1: चाहिए।
0: देखे के है कि नहीं
1: हाँ।
0: बेटा चाहे बेटी में फर्के मत करो
1: नगद कहते
0: सबके
1: दीदी।
0: एक जैसा देखो नहीं तब
1: हाँ, नगद कहते दीदी। और जो महिला है चाहे हमरे के जो बेटी मने हैं उनके सब जगह और जो
0: आदर और सम्मान
1: उमन
0: करो
1: कर प्रति है एकदम सम्मान भाव
0: उनका
1: कर
0: इज्जत
1: एकदम
0: करो
1: भावना रखे
0: बिल्कुल
1: के चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: हाँ।
0: तो चलो तब हमरे कर गोइट कर संगे संगे कार्यक्रम के आगे भी बढ़ाए ला और करेला नागपुरी लोकगीत से जेके गाए हैं सीमा कुमारी और संगीमन।

0: तो एखन हमरे नगद रिजर्व कर ली दीदी, और आगे कर का जुगाड़ है?
1: हाँ जी, रिज रंग कर ले नागपुरी लोकगीत रहने सीमा कुमारी और संगमरकर गावल, तो आगे जुगाड़ी है एगो हिंदी वार्ता है। सामाजिक और आर्थिक उत्थान में हमरे कर महिला मनकर का भूमिका है सके इके बतावे सुषमा पौराणिक, चलो हमरे सुन ले।
2: राष्ट्र तभी सशक्त बन सकता है जब उसका हर नागरिक सशक्त हो। इसमें भी महिलाओं की भूमिका ही सबसे आगे है। परिवार में एक माँ के रूप में वह अपनी यह भूमिका अदा करती है। राष्ट्र निर्माण में उसके इस योगदान का लंबा इतिहास रहा है। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। पतंजलि और कात्यायनी जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं, जिनमें गार्गी और मैत्रेय के नाम उल्लेखनीय हैं। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आई, जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं का विकास हमारी आयोजना का केंद्र विषय रहा है, परंतु पिछले 20 वर्षों से कई नीतिगत बदलाव आए हैं। 1970 के दशक में जहां कल्याण की अवधारणा अपनाई गई, वहीं 1980 के दशक में विकास पर जोर दिया गया। 1990 के दशक में महिला अधिकारिता यानी सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ ही यह प्रयास किया गया कि महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो और नीति निर्माण के स्तर पर भी उनकी सहभागिता रहे। भारत सरकार ने देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति जारी की। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2001 को मंजूरी प्रदान की थी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु महिलाओं को देश में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में बराबर की भागीदारी बनाना, मानव अधिकारों का उपयोग करना और पुरुषों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक आदि क्षेत्रों में आधारभूत स्वतंत्रता की समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं के प्रति किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए कानूनी प्रणाली

संविधान द्वारा कानूनों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सामान्य जीवन में उनकी समान भागीदारी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला साक्षरता दर भी 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 65% बढ़ी है और वे देश में शीर्ष पदों पर कार्य कर रही हैं। राष्ट्र के समग्र विकास तथा उसके निर्माण में महिलाओं का लेखा जोखा और उनके योगदान का दायरा असीमित है, तथापि देश में चहुमुखी विकास तथा समाज में अपनी भागीदारी को उसने सशक्त ढंग से पूरा किया है। अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता कायम रखते हुए वे पुरुषों से भी 4 कदम आगे निकल गई हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे आज कई महिलाएं ऊर्जावान नेतृत्व से अपने स्थानीय परिवेश में परिवर्तन ला रही हैं। जहां एक ओर भारतीय महिलाएं विधि, अकादमिक, साहित्य, संगीत, नृत्य, खेल, मीडिया, उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, प्रक्षेपास्त्र अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस की मुख्य भूमिका उभर कर सामने आई है। मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रमुख शिष्या रही डॉक्टर थॉमस को भी इस परीक्षण के बाद मिसाइल वुमेन अथवा अग्निपुत्री नामों से संबोधित किया जाने लगा है। मिसाइल कार्यक्रम का संपूर्ण नेतृत्व संभालने वाले वे देश की पहली महिला वैज्ञानिक बन गई है। राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजयलक्ष्मी पंडित ने 1946, 1947, 1950 और 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1953 से 1954 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्य भी रही। 1962 से 1964 में महाराष्ट्र की राज्यपाल और 1964 से 1966 तक लोकसभा के सदस्य रहे। कुलसुम जे सायानी ने 1957 में यूनेस्को के तत्वावधान में हुए प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा 1969 में नेहरू साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैनब बेगम 1972 में विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई तथा कई वर्षों तक वे जिला कांग्रेस कमेटी श्रीनगर की अध्यक्ष रही। उन्होंने पिछड़ी हुई जातियों के लिए 27 वर्ष तक निरंतर कार्य किया। वर्तमान में भी महिलाएं दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में महापौर, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और सांसदों के पद पर आसीन हो देश की प्रगति के लिए कार्यशील है। देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों से भी महिलाएं विभिन्न पदों पर आसीन हैं। महिलाओं की स्थिति में लगातार परिवर्तन को देश में महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है, जैसे प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान शांता रंगा स्वामी रही हैं, भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू रही हैं। नारीवादी आंदोलनों और सरकारी प्रयासों में महिलाओं के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आजादी की पैरवी की जाती है। यह संपूर्ण सशक्तिकरण की अवधारणा के लिए सर्वथा उचित भी है। आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता जैसे विभिन्न बुनियादों पहलुओं पर जनमानस को बदलने का काम किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिंग समानता का सिद्धांत अंतर्निहित है। महिलाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण कुछ मनोवैज्ञानिक भ्रम का शिकार है। पुरुषत्व की श्रेष्ठता का भान होना भी उसी का एक रूप है, लेकिन अगर पिछले 3 से 4 पीढ़ियों का लेखा जोखा देखें तो इस सोच में बदलाव भी आए हैं। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हुए महिलाओं के असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो हमारे अवचेतन में भी शामिल कर दिए गए हैं। यह सभी मुद्दे सांस्कृतिक और सामाजिक हैं, जिन पर नए सिरे से मंथन किया जाना चाहिए। आज की स्थितियों से यह स्पष्ट है कि इस तरह समस्या कानूनी कम और सामाजिक ज़्यादा है। इस सामाजिक मानसिकता को बदलने का जिम्मा देश के वर्तमान युवा पीढ़ी को ही

0: उठाना होगा, जो कथित रूप से साक्षर तो है पर इन सब बातों से जिसके शिक्षित होने पर प्रश्न चिन्ह लगा है।
1: तो एखन हमरे एगो हिंदी वार्ता सुनत रही, सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महिला मनकर का भूमिका है सके, इके बतात रहे वार्ताकार सुषमा पौराणिक। तो भाई आगे का जोगाड़ी है?
2: तो चलो हमरे एगो खोरठा लोकगीत सुनीला, इके गाए हैं रीता कुमारी और उकर संगी मन।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: तो दीदी एखन हमारे नगद रिझ रंग कर ली और खोठा लोगी सुनत रही
3: जी के गा रहे रीता कुमारी और संगे मन्ने।
2: हाँ तीकर आगो कुछ है क्या
3: बताओ रोरे।
2: तो रौरहे का एगो गीत के सुनाओ तब।
3: अच्छा जे मुड़े बना काहे ने के सुने।
2: तो कतरो कोई गायल ले दीदी लेकिन जे लोकगीत होएला नहीं वो का कहो जब तक आमने सामने आदमी ना गावे ना तो मन नहीं भरेला।
3: सही कहते भाई लोकगीत में जे रस है नी कहीं ना खेने। चलो कोशिश करी ला
2: जरूर।
3: साजन साजन साजन साजन गोई साजन ए साजन का बदे रुसी गेले

0: घरे ए साजन सासु नाना अद घरे देबे सब गरिया साजन ए साजन का बदे रुसी गेले ए साजन का बदे रुसी गेले छोटकी भौजिया साजन।
1: वाह कतई बेस सुंदर
2: कतई बेस सुंदर कैसन हम गीताली।
1: नहीं नहीं बहुत बढ़िया रहे दीदी, मन तो करे लगे सुनते रहब, लेकिन समय कर ख्याल रखे चाहिए।
2: लेकिन हाँ अब हमरे करे हमारी दुनिया कार्यक्रम का बेरा भी है जगह सिरात है, लेकिन जाए से पहले बताए चाहब कि ये कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल का। तो भाई हमरे अगला दिन यह जगह यह ठेन यह बेरा फिर से भेटा, तब तक ले जोहार
1: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, कुछ ही देर बाद हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500

0: करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोक भवन के कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो को किया गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और रांची में कल होगा झारखंड T20 लीग 2026 ट्रॉफी लॉन्च समारोह, ईशान किशन होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का एमएसपी 2461 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए के भुगतान का अनुमान जताया है। वहीं मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लगभग 7,50,00,000 टन कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू को 5-5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग अस्पतालों में मरम्मत, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, दवाइयों और पाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया है। राज्यपाल ने लोक भवन में कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर केवल 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाया गया। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि श्री सिंह का योगदान राजनीति के क्षेत्र में हमेशा यादगार रहेगा।
1: वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, दिल इंसान जिंदा दिल इंसान रहे। उनके क्षेत्र के लोग वो एक अच्छे इंसान के रूप में याद करते रहेंगे और पूरे इलाके के लोग बहुत दुखी है। कांग्रेस के सभी वरीय नेता उनके अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। इस वक्त उनके परिजन को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देना चाहती हूँ।
0: हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया है कि गोमिया में पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह के निधन पर शोक की लहर है। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
2: सुविधाओं को लेकर गुमला में धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि राज्य में पानी, बिजली, विधि व्यवस्था सारी चीजें चौपट है। आम नागरिक त्राहिमाम कर रहे हैं। जिन योजनाओं के लिए पैसा खर्च की जा चुकी है लेकिन उसका पानी नहीं मिल रहा है। पेयजल पर भारी घोटाला हुआ है। इन सारे चीजों की जांच भी होनी चाहिए और अभी जिला प्रशासन को राज्य से मिल करके आम आदमी तक राहत पहुँचाना चाहिए।
0: रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने नगर आयुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी

0: हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में आज कोलकाता के थिएटर रोड में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उद्योग सचिव अरवा राजकमल भी उपस्थित रहे। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो उर्फ राजेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, दो गोलियां और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी लेवी वसूली, फायरिंग और आगजनी समेत कई मामलों में वांछित था और पिछले एक दशक से प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के लिए सक्रिय था।
1: हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी और पुलिस के द्वारा राजेश यादव पकड़ा गया। इसने अपना अपराध स्वीकारा कि जहां जहां इसने इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में, फिर इसकी निशानदेही पे हम लोगों को करा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान से एक 9mm का पिस्टल देसी मेड बरामद हुआ और इसके पास से हम लोग को रिकवरी हुई है एक उसका मोबाइल, जिस मोबाइल के माध्यम से यह अपने टारगेट को भी कॉल करते थे और संगठन में भी जो है ये लोग आपस में उससे बात करते थे। बड़ा अचीवमेंट है खूंटी पुलिस के लिए।
0: इधर गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉ. विमल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से करीब एक दर्जन मोबाइल और सिम बरामद किया गया है। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे।
2: सूचना प्राप्त हुई है कि बसनबाड़ी और कोलहरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा ठगी की जा रही है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और 6 साइबर अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। ये लोग कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और ठगी करते थे।
0: साहिबगंज जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के दूसरे चरण के तहत सभी प्रखंडों में ग्राम संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के दौरान ग्रामीण परिवारों और सखी मंडलों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी दी गई। साथ ही बीमा नवीनीकरण, क्लेम प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ कल रांची में झारखंड T20 लीग 2026 के आधिकारिक ट्रॉफी लॉन्च समारोह का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में झारखंड क्रिकेट के भविष्य और राज्य में विश्व स्तरीय क्रिकेट मंच विकसित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। समारोह में भारतीय क्रिकेटर और झारखंड के खिलाड़ी ईशान किशन विशेष रूप से शामिल होंगे। पेंटाथलॉन। सरायकेला खरसावां जिले के 3 खिलाड़ी 17 मई को धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला संघ के सचिव सिकंदर महतो ने बताया कि शोभा महतो, रसिक चंद्र हसा और मिलन सोय जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित खिलाड़ियों को गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोक भवन के कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो को किया गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और रांची में कल होगा झारखंड T20 लीग 2026 ट्रॉफी लॉन्च समारोह, ईशान किशन होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 110.5 MHz पर।

0: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले में आज।
1: जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल आयुष्मान भारत गुमला जिला के गरीब मरीजों के लिए न सिर्फ जीवनदायिनी साबित हो रहा है बल्कि इस योजना के कारण गरीब व लाचार मरीजों के जमीन व जायदाद भी सुरक्षित हैं। इस योजना को लेकर गुमला सदर अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज के परिजनों ने बताया कि
2: मेरा नाम दिलमोहन सिंह है, आयुष्मान कार्ड के जरिए मेरा इलाज हो रहा है और दवा चल रहा है, नहीं तो हमको जमीन बेचना पड़ता या कोई चीज को माल मौसी को बेचना पड़ता, इसलिए मेरा फ्री में सब दवाइयां और ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी को धन्यवाद।
3: मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह है, मेरा लड़का का सुखदेव सिंह नाम है और गुमला अस्पताल में अच्छा से इलाज हो रहा है और मोदी जी का आयुष्मान दिया हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे खेत बेचना पड़ता, हर बैल बेचना पड़ता, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
4: मेरा नाम नारायण साहू है, मेरा भैया का इलाज करा रहे हैं भारत आयुष्मान कार्ड से, बढ़िया इलाज हो रहा है, हम लोग का खर्चा कम पड़ रहा है, हम लोग गरीब इंसान है तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, इसलिए भारत आयुष्मान कार्ड से करा रहे हैं।
5: मेरा नाम सुविता है, मेरा बच्चा है, वजन के चलते आयुष्मान के द्वारा मेरा चल रहा है, और आयुष्मान नहीं रहते तो मेरा बच्चा को बहुत दिक्कत होता, मेरा बच्चा आयुष्मान के चलते ही अच्छा है, और कार्ड नहीं रहता तो समस्या था ये कि हम लोग का अस्पताल में ही भर्ती नहीं होता, और कार्ड के चलते ही हो रहा है अच्छा से देखभाल, बाहर नहीं जा सकते।
1: गुमला जिला में आयुष्मान भारत के तहत लाभ ले रहे मरीजों एवं जिले के लक्ष्य को लेकर डॉक्टर मोनिका ने बताया कि
6: ये तो ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें टर्शरी जो ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी या टर्शरी ट्रीटमेंट, उसका हम लोग लाभुकों को बेनिफिट देते हैं। यहाँ जनरली पीएमजे के उस 5 लाख तक का कवरेज मिलता है और ये कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। हमारे जिला का टारगेट जो था उसके हिसाब से अभी हम लोग 69% कवरेज कर चुके हैं, दैट इज हम लोगों ने 69% लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड कर दिया है। हमारे स्टेट में राशन कार्ड धारी होते हैं उन्हीं को आयुष्मान कार्ड बना के देते हैं, अंडर पीएमजे 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका ना केवल एडमिशन के समय जो होता है और उसके बाद एडमिशन के दौरान टेस्टिंग या फिर दवाई जो लेते हैं वो उनको फ्री में मिलता है। गुमला जिला में तो जैसे एवरेज हम लोग महीने में सदर में ही केवल 500 जैसा लाभुक रहते हैं और बाकी सीएचसी वगैरह में भी ऑन एन एवरेज 100 जैसा लाभुक हर सीएचसी में पर महीने आ जाते हैं, बट गवर्नमेंट सिस्टम में तो जो उनको दवाई वगैरह बाकी सब इलाज उनको फ्री ही रहता है। इसमें हमारे बहुत सारे पेशेंट है जो रांची जाके इसका लाभ उठाते हैं। ये प्रोग्राम भी इसलिए बना था जो लाभुकों को ऐसा ना लगे कि उनके पैसे के अभाव में वो अच्छी इलाज या अच्छा दवाई नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो लोग जाते हैं तो इसका इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से वो फ्री का इलाज और फ्री की दवाइयां ले सकते हैं।
1: बहरहाल केंद्र सरकार की यह महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत योजना गुमला जिला के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: Durang re maja raskan durang bu ayum kida. Durang ayum te ji monko soben raske jana na do ayar te. Warta bu ayumia, wartakar do Marcel Guria. Warta ra bisay do bikas ke liye mahila siksha jaruri.
1: एन दिसुम रेन कुड़ी को ओल पड़ाव बेहिसाब जरूर गया नया मियत लेका ते एन रानू लेका मेनागा ची रोगा कन को बुगी ओ मेनते देंगा ओ ओड़ ओ मोसा पेड़गो ओ मेनते देंगाया महिला शिक्षा नया मियत मरंग बिसर आ काजी तना एन दिसुम रा आर्थिक पेड़ ए नगेन ओड़ ओ होड़ो गोट समाज रे पेड़ आन मेनते ओल पड़ावा कन कुड़ी आ एन लेकन हथियार तना ची भारतीय गोट समाज रे ओड़ो आया ओड़ा परिवार रे आया गुन ओड़ो सेना ते बुगिन लेकन काजी कमी बोलोवा भारतीय गोट समाज रे आर्थिक ओड़ो सामाजिक विकास मेंते महिला शिक्षा पूरा आगे जरूर गया चिया ची आया हुन को आ सीधा उतर गुम के दो एंगा ते गे तनी इनी जिदन रा इतकन ओड़ो का इतकन कमी कोरे बिनगा उदबैया मेन दो महिला शिक्षा रे पूरा आगे ध्यान लगाओ लगतिया कुड़ी ओड़ो कोड़ा जाति बरन किन मित सिकारन बरिया मुंडी किन तनकिन चिलका ची साइकिल रा संतुलन बरन चका किन रे तैना एन लेका गे होड़ो गोट समाज रे आ विकासो कुड़ी ओड़ो कोड़ा गा तरन रे मित बराबरी गे जोगवा कना बरन किन मित दिसुम के बुरु चुटी चितन ते इदी रा पेड़े किन जोगवा एना मेन ते बरन कुड़ी ओड़ो कोड़ा जाति किना ओल पड़ाउन नगेन बराबरी शिक्षा रा हक नमो लगतिया जय निकिन बरिया रे जय मियत रे आ ओल पड़ाउन रा अस्तर उयु जन रे दो होड़ो गोट समाज रे दिसुम रे आ उन्नति चा विकास का होबा दड़ी ओवा एना मेंते कुड़ी को आ ओल पड़ाव का हिंदो पर का लगतिया कुड़ी साक्षरता रे आ सोबेन लाभ दो कबू लेका दड़िया मेन दो नया जरूर बू कजी दड़िया ची मियत शिक्षित कुड़ी आया आ परिवार उड़ो हुन को आ जिम्मेदारी बेस लेकते पूरा तड़िया को आए हुन को बुगिन चा का बुगिन रे आ सेना एम दड़िया को आए सामाजिक उड़ो आर्थिक कमी के ते दिसुम रा प्रगति रे आया आ योगदान ओम दड़िया मियत कोड़ा ओल पड़ाव के ते अबू मियन होड़ो जकेत गे शिक्षा बू तेबा दड़िया मेन दो मियत कुड़ी हुन के बू शिक्षित कित रे अबू गोटा सुम जके शिक्षा बू तेबा दड़िया कुड़ी साक्षरता रे केनेटे हिजु जन रे ने दिसुम रा विकास ओड़ो उन्नति रे कबू लेल नम मेया एना मेनते नया बेसे जरूरू मेनगा ची कुड़ी हुन को गे अकवा आ शिक्षा रे आ हक एमा कोआ ओड़ो इनकु जा जेता लेकते कोड़ा कोआते कोम का अटकर लगतिया ने समय कुड़ी शिक्षा रा गुनों कोबू लेल चीना बेसे जरूरू किया चिया ची इनकु आयगा आ हुन को आ सीधा शिक्षक तनी इनी गे आयरते सिन को ओची दिसुम रे आ बबई रे मियत नवा पहचान को एम दड़िया जा हुन रे आ भविष्य इनिगा आ इंगते नम कर दुलर ओड़ो मजा लेकते लेल असुल ओड़ो हरा मरंग दो मियन कुड़ी होड़ोगे ए कमी दड़िया मिमियत हुन को आ सीधा ओड़ो एटे सेना दो एम ओनी इंगा के तड़ी इना मेंते मियत इंगा चाकुड़ी रा ओल पड़ाउन पे हिसाब जरूर गया इना ते आयगा आ हुन गाड़ा को रे इना गुन एम तड़िया को आ जिदन रे बुगिन होरा उदुब दड़िया शिक्षित कुड़ी आयगा आ हुन गाड़ा बैरी दो का मेन दो एन होपुर जपा रेन होड़ो को आ जिदन कोयो बदली दड़िया इना ते दिसुम के विकसित लाई मेनते पूरा मरंग योगदान एम दड़िया मियत कुड़िया आया जिदन रे इंगा कुड़ी हुन आजी ओड़ो अड़ंदी कुड़ियो ए बैना ने लेका मियत कुड़ी शिक्षा रा जरूर मेनागा जारिस्ता रे तोलो सीधा रे इनी दिसुम रेन आजाद नागरिक

0: tani mendo ini en soben adhikar kora hagdar men a chilkachi koda ko nam jada inkuge ako a mone sanang te shiksha grahan ra hak menaga ina mente inku ako a mone sanang chetre re ko kami dadia kuri ko ako a katare tingun mente odo atmanirbhar bain mente shiksha te denga namya shiksha te khali kuri samaj chetan astar re ko duba mendo kuri ko prati samaj re en ka bes udu ko parkaawa inate inku enga apure boj leka ko lel chat ko taina mendo ne shiksha horate samaj re etkan jagar ko seno tana bharat sarkar mahila shiksha re a badotri mente bese jaya yojana e chalawa kada chilkachi sarv shiksha abhiyan indira mahila yojana balika samriddhi yojana rashtriya mahila kosh महिला समृद्धि योजना रोजगार उड़ो आमदनी मेंते प्रशिक्षण केंद्र उड़ो महिला उड़ो कोड़ी होन को आ प्रगति मेंते रुकुम रुकुम कार्यक्रम को मिनगा नियमित भारत सरकार उड़ो राज्य सरकार सहायते बेसे मरंग पहल तना ने लेखन योजना रा लाभ अबू के पूरा ते पूरा आओ लगतिया अबू आ भारत दिसुम आजादी समूह रे प्रयास होबाल कना एना पूरा गे मिनगा प्रगतियो हुबा कना मेंदो नया कमी समय रडे जकेत का तेबा कना ना आ ने होरा रे बेसे कमी सरिया कना भारत दिसुम विश्वरे ओडो दिसुम कोलोते तायम मु रा कारण दो कुड़ी सक्षरता रे कुम मेनगा भारत दिसुम चा जा दिसुम रे कुड़ी सक्षरता भारत दिसुम चा जा दिसुम रे कुड़ी सक्षरता मेंते इमुनंग गंभीरता बनोगा चिया ची समाज कोड़ी होन कोरे जया जया रोक टोक को लदिया कना नया रोक टोक को सिकड़ा ते सिकड़ा परका जरूर गया नया रोक टोक को परका नगेन अबू कोड़ी होन को ओल पड़ाउन लाई जोर शोर ते मरंग अस्तर रे जारुकता फैलाओ हुबा हुआ उड़ो कोड़ी कोगे नया रोक टोक को परका नगेन अबू कोड़ी होन को ओल पड़ाउन लाई जोर शोर ते मरंग अस्तर रे जारुकता फैलाओ हुबा आवा ओड़ो कुड़ी होन को के अकवा अधिकार को उदुब हुबा हुआ इनाते इनकु आयर को हिजुआ समाज ओड़ो दिसुम आयर ते इदी नतिन योगदान को हिम दड़िया
1: अबु वार्ताबु आयुम केदा वार्तारे पुरागे मजा मजा जगर को बु आयुम केदा ना अदो अबु ओड़ो मिया दुरंग बु आयुमिया नेया दुरंग दो जावरा मुंडा ओड़ो इनिया आ सोंगे कुआ आ दुरंग।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पीढ़ियां।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं, आज की कहानी का शीर्षक है दहेज। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का विषय बहुत ही गंभीर है और कहीं ना कहीं हमारे दिल में गहरा असर डाल सकती है। जी हाँ, दहेज। दहेज समाज में एक सामाजिक अपराध है जो महिलाओं पर कल्पना से परे प्रताड़नाओं तथा अपराधों का कारण है। इस अपराध ने समाज के सभी तबकों की महिलाओं की जान ली है, चाहे वे गरीब हो, मध्यम वर्ग की हो या धनाढ्य हो। लेकिन आज के समय में सभी इस जाल में फंसते हैं एवं शिकार होते हैं, जिसका मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव और लालच। जी हाँ श्रोताओं, मनुष्य में बढ़ता हुआ लालच। दहेज वर्तमान समय में इतनी

0: बड़ी समस्या है कि इसके कारण कई बेटियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। शादी विवाह के बीच दहेज की चर्चाएं भी समाज में अक्सर सुनने में मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
1: माँ, आप इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: बस थोड़ी सी चिंता है।
1: कैसी चिंता माँ?
2: वो रमा काकी से बात हुई थी आज, तो वो बता रही थी कि उनकी बेटी सुनीता की शादी हुई है, तो जो सुनीता के समधियों ने दहेज मांगा था, तो बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने किसी से उधार लेकर अपनी बेटी की शादी करवाई।
1: क्या, उधार लेकर?
2: हाँ बेटा, अब बेचारी बड़ी परेशान है। कमाई वैसे ही कम है भाई साहब की, ऊपर से ये कर्जा उतारने की टेंशन।
1: पर माँ, ये तो बहुत ही गलत बात है।
2: गलत तो है बेटा, पर ये समाज नहीं समझता। अगर वो दहेज नहीं देती तो उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं होती और ना ही समय से हो पाती।
1: सुनीता आंटी की बेटी खूब पढ़ी लिखी और समझदार है, इतनी प्यारी लड़की की शादी तो यूं ही हो जाती है, उन्हें दहेज देने की जरूरत कहाँ थी। आप तो जानती है ना माँ, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन अपराध है। आंटी के पास इतना होता और वो अपनी खुशी से देती तो बात और थी, पर दबाव में और उधार लेकर दहेज देना अपराध है। आंटी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया माँ।
2: बेटा, अपने बच्चों के आगे सही क्या और गलत क्या, बस अपने बच्चों की खुशी ही नजर आती है।
1: नहीं माँ, गलत तो गलत ही है ना, सब ऐसा करेंगे तो समाज में सुधार की शुरुआत कैसे होगी।
2: तू अभी नहीं समझती है, कुछ ही 100 में से कोई एक दो होंगे जो ये बात समझते होंगे, बाकी लोग जो समाज में है ना, उन्हें नहीं समझाया जा सकता। समाज का जो चलन है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
1: तो क्या माँ, कल को कोई मेरी शादी के लिए भी दहेज मांगे तो आप दे दोगे?
2: बेटा, अब मुझे यही तो चिंता है, बेटी तेरे बाबूजी तो है नहीं, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, शादी में तो सब देना ही पड़ेगा ना।
1: आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी आपने ही कहा ना ये सब गलत है, फिर भी आपको करना है, समझ तो आप भी नहीं रही हैं। दहेज देना गलत है और इसमें मैं आपके साथ नहीं हूँ माँ। अगर ऐसी ही चिंता है आपको तो मुझे शादी ही नहीं करनी।
2: अरे तू पागल हो गई है क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा?
1: देखो माँ, गलत का साथ मैं नहीं दे सकती और ना ही मैं आपको ऐसी चिंता में देख सकती हूँ, तो अब सारी चिंता खत्म।
2: नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, परसों तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम ऐसा कुछ मत करना बेटी, तुमको मेरी कसम है।
1: अरे माँ, मतलब आप चाहती हैं भले आपकी बेटी दुखी हो जाए पर उसकी शादी होनी ही चाहिए?
2: बेटा, ऐसा तो नहीं चाहती मैं, बस मैंने इतना कहा है, तू परसों कुछ मत कहना, मैं देख लूंगी अपने आप।
1: ठीक है, अभी आप सो जाइए और चिंता मत कीजिए। ईश्वर, मैंने सुना है कि आप हो और मेरा ये विश्वास है कि आप हो और जीवित हो, हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं आप। हे ईश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस दहेज प्रथा के विरोध में, जो समाज में डर है, सब चुप हैं, दहेज लेने वालों को कोई रोक ही नहीं रहा और आज ये मेरे जीवन में भी आन पड़ी है। माँ ने मुझे कसम दी है कि मैं कुछ ना कहूँ और आप जरूर कुछ कर सकते हैं, प्लीज मेरी इन हालातों में मेरी मदद करो, मुझे सही राह दिखाओ कि मैं सही निर्णय ले पाऊं और जो भी परसों आ रहे हैं मुझे देखने वो समझ पाए और माँ को भी मैं समझा पाऊं, प्लीज मेरी मदद करो। परमेश्वर जरूर कुछ अच्छा करेंगे, बाकी तो संभाल लो खुद को सुमन, जो होगा अच्छा ही होगा परसों।
3: माँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, दहेज मांगना सही नहीं है, यह एक कानूनन अपराध है।
4: बेटा, इतना बोलने की इजाजत मैंने नहीं दी है तुझको, तू शांत रह तो ही अच्छा होगा। सुबह से देख रही हूँ बोले जा रहा है, अगर वो अपनी बेटी की खुशी से कुछ देना चाहती है तो उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है।
3: माँ, पहली बात तो उस लड़की के पिताजी नहीं है और दूसरा मैं आपको जानता हूँ, वो खुशी से दे या ना दे पर आप

0: जरूर दबाव डालोगी उन पर।
1: बस अब चुप।
0: माँ, हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे सिर्फ मेरे लिए एक अच्छी जीवन साथी चाहिए ना। वो अपनी पढ़ी लिखी बेटी दे रहे, यही मेरे लिए काफी है।
1: जब समाज वाले पूछेंगे हमसे कि क्या मिला और मिला जी, बेटे की शादी तो करा दी, तो क्या कहेंगे हम कि हमें तो एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की जो हमारे बेटे के लिए अच्छी जीवन साथी है और हमारी अच्छी बहू है जो हमारा घर संभालेगी, ये कहेंगे क्या?
0: हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहना है।
1: चुप रहो तुम, हंसेंगे समाज वाले हम पर। अब हमें कुछ सुनना नहीं है, चुपचाप चलो और अपना मुंह बंद रखना।
0: मैं आपके इस फैसले से खुश नहीं हूँ। आप हमेशा ही सामान देखती हैं, कौन कितना दे रहा है। अगर दहेज ही चाहिए ना तो इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? माँ, मुझसे नहीं होगा, ये जानते हुए कि दहेज लेना जुर्म है। और मैं आपका साथ दूँ, आपको जो देखना है वो देखो, जो मुझे देखना होगा वो मैं देख लूँगा।
1: बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही होगा।
2: अरे उर्मिला जी।
1: हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते
2: जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, कैसी हैं आप?
1: हम तो बढ़िया हैं, आप सुनाइए।
2: को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना?
1: नहीं नहीं, दिक्कत कैसी, बस कार में बैठे और पहुँच गए।
2: सुमन जरा पानी लाना बेटा।
3: नमस्ते आंटी।
1: नमस्ते नमस्ते बेटा, ये तो आपकी बेटी है ना?
2: जी।
1: सुंदर तो है
2: जी। आपका बहुत शुक्रिया।
1: आओ बेटा बैठो इधर, कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने?
3: एमए बीएड किया है।
1: ओ, पढ़ाई तो काफी की है, बस घर में ही रहती हो या कुछ काम भी करती हो?
3: जी, पास के स्कूल में पढ़ाती हूँ और बस घर के काम में माँ की मदद।
1: अच्छा जी, दो मिनट। हाँ बेटा, कैसी लगी तुम्हें?
0: माँ, मुझे सुमन पसंद है, इसके व्यवहार में जो सादगी और सरलता है, बस ऐसा ही जीवन साथी मुझे चाहिए।
1: तो मैं आगे की बात कर लेती हूँ फिर, बस तुम अपना मुंह बंद रखना।
0: उसका कोई मतलब नहीं? माँ, मैंने जो आपको घर पर कुछ कहा था।
1: कहा तो मैंने भी था तुमसे, तुमसे वो होगा कि नहीं? मैं तुमसे वही चाहूँगी जो मैंने कहा है। चुप रहना अब, जितनी तुम्हारी राय चाहिए थी उतनी ले ली मैंने। हमारी तरफ से तो हाँ है।
2: सच कह रही हैं क्या आप?
1: हाँ भाई, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। वैसे कांता जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछनी है आपसे।
2: हाँ पूछिए ना।
1: शादी में अपनी बेटी को क्या भेंट दे रही हैं आप वैसे, इस बारे में कुछ सोचा है आपने? अब क्या है ना कि हमारे घर में तो ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, पर समाज में दिखाना तो पड़ता ही है।
2: हाँ सही कह रही हैं आप। वो क्या है ना, बात ऐसी है कि सुमन के बाबूजी तो है नहीं, सुमन और मैं इतना ही कमा पाते हैं कि बस घर चल जाए। फिर भी मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी बेटी को जरूर दूंगी।
1: अरे कांता जी, देखिए अब हमें क्या है कि हमारे लेवल के हिसाब से समाज में दिखाना भी पड़ेगा।
2: तो आप बताइए फिर मुझे, तो मैं उस हिसाब से फिर तैयारी करूंगी।
1: बस वही 4-5 तोला सोना, डबल बेड, वॉशिंग मशीन, एक बड़ी सी गाड़ी और इसके अलावा जो भी आपके मन में हो वो दे दीजिए।
2: जी इतना सब?
1: क्यों, ज्यादा है क्या? नहीं हो पाएगा आपसे?
2: नहीं नहीं, मैं कर लूंगी।
3: एक मिनट आंटी, मुझे एक दुविधा है।
1: हाँ बेटा बताओ।
3: आप आपके बेटे के लिए जीवन साथी देखने आई हैं या अपने घर के लिए सामान?
1: क्या मतलब है तुम्हारा?
3: आपने अभी जो ये लंबी सूची पकड़वाई है, लगता है आपको सामान चाहिए।
1: बेटा जब बड़े बात कर रहे होते हैं बीच में मत बोला करो।
3: क्यों आंटी, आपको पता नहीं है दहेज मांगने पर क्या हो सकता है?
2: अरे बेटी चुप कर तू,
1: बहुत ही बदतमीज बेटी है आपकी।
0: सही कहा माँ आपने, बदतमीज तो बिल्कुल है, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा बदतमीज ही होता है, पर ऐसे सच बोलने वाली सचमुच मुझे पसंद है।
1: तुझे मैंने घर पे कुछ समझाया था ना?
0: जी माँ, और मैंने भी आपको ये जो अभी आपने लिस्ट दी है ना, इसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
1: क्या जेल, वो कैसे?
0: हमारे देश की सरकार ने दहेज प्रथा को

0: रोकने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 भारतीय दंड संहिता IPC के तहत बनाए गए हैं, जो दहेज लेने देने और मांगने का अपराध मानते हैं। इस कानून के तहत दहेज के लेने देने पर 5 साल की तो कैद है और 15,000 तक का जुर्माना भी है। माँ
1: सही कहा है इन्होंने, अपराध को सहने वाला भी बराबर जिम्मेदार होता है। जितनी सजा दहेज लेने वाले के लिए है, उतनी ही सजा दहेज देने वाले के लिए भी है। माँ
0: हमारी सरकार इतने कानून बना रही है, इतना सोच रही है इन प्रथाओं को रोकने के लिए, और हम भी सहयोग नहीं करेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ सकता है।
2: मुझे माफ कर दे समन बेटा, तूने मुझे इतना समझाया फिर भी मैं नहीं समझी, माफ कीजिएगा। और मिला बहन जी, मेरी बेटी की शादी तो मैं वहीं करवाऊंगी जहां उसकी खुशी हो और जहां दहेज देने के लिए मुझे मजबूर न किया जाए। और संदीप बेटा, शुक्रिया बेटा, तुम बहुत ही नेक और समझदार लड़के हो।
3: नहीं नहीं कांता बहन, मुझे जेल नहीं जाना। आपका तो पता नहीं, पर मेरा बेटा मुझे जेल जरूर पहुँचा देगा अगर मैंने दहेज मांगा तो। मुझे भी अपनी गलती समझ में आ गई है, अब मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, वो भी सिर्फ आपकी मर्जी से और खुशी से।
2: तो फिर रुकिए, अभी मिठाई लेकर आती हूँ मैं समधन जी।
3: जल्दी कीजिए।
0: थैंक यू सुमन, आपने आवाज उठाई तो मुझे भी हिम्मत मिली।
1: थैंक यू संदीप जी, आपने भी समझा और सपोर्ट भी किया, थैंक यू गॉड।
4: तो श्रोताओं, देखा आपने किस प्रकार शिक्षा समाज में हो रहे अपराध को रोकने में सहायक हुए। साथ ही एक और बात ध्यान देने की है, वो है ईश्वर पर विश्वास। जी हाँ, ईश्वर पर विश्वास, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। जिस प्रकार सुमन ने प्रार्थना की और ईश्वर पर विश्वास दिखाया, उसी प्रकार हमें भी जीवन के कठिन समय में उस पर विश्वास करना चाहिए और अच्छे समय में उसका शुक्रिया करना चाहिए। तो श्रोताओं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए। अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या हमें पत्र भी लिख सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
5: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
4: तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं, दहेज लेना और दहेज देना सही है या गलत? अवश्य इस बारे में सोचिए और हमें जवाब दीजिए। अब मैं इसी सवाल के साथ आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नई कहानी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।

श्रोताओं, स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। रजनीगंधा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का गीत, फिल्म नराज से। संगीत अनु मलिक के हैं, गीत क्वातिल सिफाई के और आवाज़ कुमार शानू के हैं।

आइए सुनते हैं गीत फिल्म सिलसिला से। शब्द हसन कमाल के हैं और संगीत शिवहरी की, आवाज किशोर कुमार की।

0: अब वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: अंतराल के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम रजनीगंधा में। आइए सुनते हैं गीत फिल्म लव स्टोरी से सदरचना।

आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत, मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीत आनंद मिलन के, आवाज़ अलका याग्निक और उदित नारायण के।

आइए सुनते हैं फिल्म सरफरोश का अगला गीत। गीतकार है समीर, संगीतकार है जतिन ललित और आवाज़ है कुमार शानू अलका याग्निक की।

आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म आसिकी से समीर के गीत, नदीम सैफी और श्रवण राठौर के संगीत, और इस गीत को गाए हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए अब सुनते हैं सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: बड़ी खुशी हुई।
2: शुभमय, आज के कैबिनेट मीटिंग में ग्रेडेशन और आधुनिकीकरण नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इन्होंने बात की है कि वो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी। तो कैसे आप देखते हैं, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हमें पता है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि चारों ओर पूरे देश में, खास करके और उड़ान के बारे

0: में भी हम जानते हैं एयर कनेक्टिविटी के ऊपर काफी बल दिया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको?
1: जैसे आप सही कह रहे थे जी कि ये सिर्फ वेस्टर्न इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया में आप जैसे जानते होंगे कि रेलवे के लिए नागपुर एक ऐसा जगह है जहां पे भारत के सारे रेल लाइन उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण से आके मिलते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट है
0: जी।
1: इसीलिए अगर हम जिससे कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का आवागमन अगर हम देखें भारत के किसी जगह पे तो इस क्षेत्र से वो जरूर होके गुजरता है, इसीलिए ये वाला सेक्टर को और ये वाला सेक्शन को कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी महत्व दिया गया है और रहा भी है पुराने दिनों में भी और आज के दिन में तो खासकर। तो हम जब कहते हैं कि भारत में सारे प्रोडक्ट्स के मूवमेंट होने चाहिए, इजी मूवमेंट होने चाहिए, तो नागपुर अपने आप में एक चुनिंदा जगह बन जाता है, जिसलिए नागपुर का जो एयरपोर्ट है अस्तर कार्गो एयरपोर्ट वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। आपको पता ही होगा कि ये इंटरनेशनल बोइंग कंपनी ने नागपुर को ही चुना है अपने मेंटेनेंस ऑपरेशंस एशिया में और साउथ एशिया में खासकर चलाने के लिए इसी जगह पे, तो ये एक अपने आप में अपने एक एविएशन हब के रूप से बन गया है और जो आज के कैबिनेट का जो अप्रूवल है उसमें भी इसकी रिकग्निशन है कि एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट जो नागपुर में बन चुका है 2009 से ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना था और तब से ये चल रहा है, तो इस प्रोजेक्ट का और इस एयरपोर्ट का इन सब चीजों को मिलाकर बहुत ही सिग्निफिकेंस है। हालांकि हम पैसेंजर एयरपोर्ट्स की बात करते हैं और लोग जनरली देखते हैं कि जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट में मिलियंस ऑफ लोग मूव करते हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो नागपुर एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट है
0: और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उत्कृष्ट कह सकते हैं ये उदाहरण है। आइए सुनते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा इस मौके पर।
2: पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीजें।
0: और हम बात करते हैं अब कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है आज न्यूनतम समर्थन मूल्य का 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए विपणन वर्ष 2026-27 को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जबकि हमें पता है कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें मुख्य तौर पर किसान हमारे रेनी सीजन पर वर्षा पर कितना ज्यादा वो निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और कुछ जो डिसीजन लिए गए हैं इसमें उसमें सबसे अधिक जो है वो जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है फॉर द सनफ्लावर सीड जो कि लगभग 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और उसके अलावा और भी हम देखेंगे कॉटन के लिए और सेसमम के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और 500 रुपए प्रति क्विंटल क्रमशः। तो इसके अलावा और भी कुछ हैं 14 जैसा कि हमने पहले बात की 14 क्रॉप्स हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है, तो कैसे आप इसको देखते हैं और किसानों को कैसे इससे लाभ मिलता हुआ आप देख रहे हैं?
1: खासकर अब ये चीज हम जानते हैं कि इस साल वैसे ही पूरी दुनिया में काफी अफरा तफरी मचा हुआ है और सारे दुनिया में इन्फ्लेशन और डिस्टर्बेंसेस बहुत बड़ी मात्रा में आ गया है, तो वहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से ही नहीं साथ में इनकम का भी रचना बहुत मायने रखता है कि क्योंकि हमारे करीब 48% हमारे वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में बने हुए हैं जिसका काफी ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर में ही रहते हैं, तो इन सारे लोगों के लिए एक अगर हम देखें कि कितना उनके लिए प्रोडक्टिव रहेगा उनके लिए कितना इनकम जनरेटिंग रहेगा उनका जो काम काज है तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को सरकार ही खरीदेंगी, लेकिन जैसे ज्वार बाजरा रागी मेज अरहर मूंग इन सभी चीजों में बिजनेस पीपल आके ही खरीदते हैं, लेकिन जब रेट एक सरकार की तरफ से तय हो जाता है कि इतने रेट से अगर कम हुआ तो सरकारी एजेंसियां वो चीजों को खरीद लेंगे, तो एक भरोसे का सिक्वेंस बन जाता है फार्मर्स के लिए, उनके लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि इतने रेट में हमको मिलेगा
0: जी।
1: और ये इसका घोषणा होना सही समय पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनको ये प्राइसेस आगे चल के क्या प्राइसेस रहेंगे उस प्राइस का एक अंदाजा बन जाता है, एक क्लैरिटी मिलती है। जैसे आप सनफ्लावर की बात कर रहे थे, साथ में जो

0: की पैडी वगैरह का तो ऑफकोर्स है, क्योंकि धान पैडी भारत के
1: जी
0: सभी
1: जी
0: जगह पे पैडी का
1: बाजरा है
0: कल्टीवेशन
1: जी
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: बाजरा है, लेकिन साथ में जो दाल, दाल के जो प्रोडक्शन है, दाल का जो उनका जो रेट्स हैं, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर क्या रेट बनता है, उनको किस रेट में दिया जाता है।
1: जी
0: तो इन सब चीजों का जो रेट का जो राइज है, कितना परसेंटेज किया जा रहा है, उसका कितना बारीकी से करते हैं। खासकर मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का दृष्टाकर्षण करूंगा कि हमारे सारे श्रोता कि मैं खासकर एक बहुत बड़े जो फार्मिंग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसका अनाउंसमेंट और इसका प्राइस क्या बना बहुत ही मायने रखता है कि कितने परसेंटेज राइज इस साल दिया गया। ये तुलना अगर करें
1: जी
0: तो सरकारी क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं
1: जी
0: उनके पे कमीशन के अवार्ड से ये इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के पैमाने के ऊपर, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर, उनके लाइफ के, जैसे कॉटन के प्राइसेस जो हैं, इन सभी चीजों के प्राइसेस कितना बनेगा, इससे हमारे कृषि क्षेत्र कितने शक्तिशाली रहेंगे, उसमें कितने लोग काम कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, वो सब इनसे जुड़ा हुआ है।
1: जी जी शुभ मैं और आइए सुनते हैं मंत्री महोदय ने क्या कहा इस अवसर पर।
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया आज के कैबिनेट मीटिंग में वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, जिसका कि वित्तीय आउटले अगर हम कहें तो 37,500 करोड़ रुपए है। तो शुभमय, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपने भी अभी चर्चा किया पीछे की जिस तरह से हम जूझ रहे हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, एनर्जी क्राइसिस खास करके अगर देखें, तो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर अगर हम इसको देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आइए सुनते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा इस विषय पर।
2: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपरली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे। हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
1: तो एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। शुभ, कैसे देखते हैं आप इसको आने वाले समय में, जैसा कि मंत्री जी बात कर रहे थे, ये एक
0: हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, व्हाटएवर, इन सबको यूज करने से ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे बेनिफिट मिलता है। तो हम नेचुरल गैस का भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात की बात कर रही है, हम इंपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अफरा तफरी की वजह से गैस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए हर तरीके में ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे ही काम आ सकता है कोल गैस। तो ये कोल गैस जो है इसका टेक्नोलॉजी पता है, इसका टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए हम सोच रहे थे कि करें ना करें। खासकर कुछ महीने पहले तक चल रहा था कि कोल को किस तरीके से काम में लाया जा सकता है, एटॉल करना चाहिए या नहीं, हालांकि एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोल को अगर यूज करना है और कोल गैस बनाकर तो वो एनवायरमेंट

0: निर्भरता, अपने अपने इकोनॉमी को आगे तेजी से ले जाने के लिए, सब कुछ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी, जी,
0: तो
1: जी.
0: इसमें ये जो 37,000 करोड़ का जो कैबिनेट का जो अप्रूवल है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत सारी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट्स में आने के लिए सुविधा होगी। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि आपको हम एक सीड कैपिटल देंगे, एक सपोर्ट देंगे, तो इसके बेसिस पे आप अपना काम आगे ले जाइए। और अगर हम आगे अगर चले तो दिस वुड बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर।
1: जी जी जी शुभ मैं। और एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में, आज गुजरात के अहमदाबाद से ढोलेरा तक एक सेमी हाई स्पीड डबल रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट भी जिसको मंजूरी दी गई, जिसका कुल लागत मूल्य 20,667 करोड़ रुपए है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यूनिक भी है, इसलिए कि ये देश का ये पहला ऐसा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये किया जा रहा है। हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से रेलवे का जाल नेटवर्क जैसा बिछाया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है जो इस मंजूरी मिली है, ये कैसे देखते हैं आप इसको?
0: इसको अगर आप उससे अगर आप लिंक करें कि ये जो प्रोजेक्ट है
1: जी,
0: ये ढोलेरा से आ रहा है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन
1: जी जी,
0: अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेस सेटअप कर रहे हैं। तो ढोलेरा से अहमदाबाद का कनेक्टिविटी हाई स्पीड होना जरूरी था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अहमदाबाद से बॉम्बे तक का बुलेट ट्रेन बन रहा है, तो वो बुलेट ट्रेन से अगर हम मुंबई से अहमदाबाद लोगों का जैसे कनेक्शन रहेगा, साथ में उनको एक इमीडिएट कनेक्शन जरूरत पड़ेगा ढोलेरा तक जाने का, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र की कंपनियां इस रीजन में अपना इन्वेस्टमेंट सेटअप कर रहे हैं। तो ये वाला एक जिसे कहते हैं मिसिंग लिंक या था, जो अभी जिसका पूरण किया जाएगा, तो इसका तो बहुत ही इसका कितना महत्व है वो आने वाले दिनों में ही बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा जो रीजन है इस रीजन में हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बहुत जरूरत था, जिसके तरफ सरकार ने ध्यान दिया है, और इसलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: शुभ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए हमारे श्रोताओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में, मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।
3: समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, शबाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की CBI ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच CBI को सौंपने का फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब

0: में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार। कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन

0: زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں نیتاؤں کے بیچ دویپکشیہ مدوں، اورجا سہیوگ سہت کئی مہتوپورن مدوں پر وچار ومرش ہوگا۔
1: ڈورنگ دا وزٹ،
2: یاترا کے دوران دونوں نیتا نویش، اورجا، پردیوگکی، سنسکرتی اور آپسی جن سمپرک سمیت وبھن کھیتروں میں دویپکشیہ سمبندھوں کو اور مضبوط بنانے کے اپایوں پر چرچا کریں گے۔
1: پیپل ٹو پیپل کنیکٹ۔
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक
3: शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
3: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
5: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
6: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
3: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने 5वीं बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश

0: की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी में जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से 835 करोड़ रुपए से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए सेंट्स प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वर यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14

0: स्थान के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप के साथ भी मिलकर कार्रवाई कर रही है, जिसने मामले की शुरुआती जांच की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी जुमे को मुत्तहिद अरब इमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने मुत्तला किया कि अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी जुमे के रोज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ खासतौर से तवानाई के सिलसिले में इश्तराक समेत बाहमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 मुल्कों का दौरा करेंगे, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और 4 यूरोपीय ममालिक नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। वज़ीर आज़म के दौरे का आगाज 15 मई से होगा, जिसके तहत वो यूएई पहुंचेंगे, जहां वो यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ तवानाई में इश्तराक पर बाहमी बातचीत करेंगे।
0: जनाब जॉर्ज ने कहा कि अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत वजीर आजम उसी दिन नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इस दौरान जनाब मोदी शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम रॉब जेटन्स के साथ बातचीत करेंगे। अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत जनाब मोदी इतवार के रोज स्वीडन पहुंचेंगे। वजीर आजम ने मोदी की ईंधन के इस्तेमाल में कमी की अपील का गहरा असर देखने में आया है, जिसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। वजीर आजम ने इसकी नजीर कायम करते हुए खुद अपने काफिले का हजम नुमाया तौर पर कम किया, जिसके बाद बीजेपी के कई वज़राए आला और दिगर रहनुमाओं ने भी इस तर्ज अमल को अपनाया। वजीर आजम की अपील को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरकारी गाड़ियों के काफिले में फौरी तौर पर 50% कमी करने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भी ऐलान किया कि वो अपने काफिले में कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और अपने वजीरों को भी ऐसा करने को कहा है। उन्होंने अवाम को सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की भी तरगीब दी। मगरबी एशिया में जारी तनाजे के दौरान वजीर आजम ने इतवार को अवाम से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने और जरे मुबादला की बचत के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की थी। वजीर आजम ने मोदी ने हरियाणा के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस जीत ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि अवाम ने तरक्की और बेहतर हुक्मरानी की पॉलिसियों पर अपना मुसलसल एतमाद जाहिर किया है। वजीर आजम ने कहा कि यह कामयाबी इस बात की भी अलामत है कि हरियाणा के अवाम रियासत की डबल इंजन हुकूमत पर भरपूर एतमाद रखते हैं। वजीर आजम ने उन तमाम पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी जिन्होंने बीजेपी की इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फलों, सब्जियों, तिलहन, गजाई अजनास, मवेशियों के इस्तेमाल की अशिया और दिगर लाजमी मसनूआत की बैन रियासती नकल हरकत पर तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। साबिक टीएमसी हुकूमत ने इन अशिया पर पाबंदी आयद की थी। इख्तदार में आने से कबल बीजेपी ने किसानों को पाबंदियां हटाने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने टीचरों, म्यूनिसपैलिटी और कोऑपरेटिव की भर्ती में हुए घोटाले के मामलों को मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने आज टीएमसी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसने बदउनवान अफसरों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत ने उन अफराद की मुलाजमत भी खत्म कर दी है जिन्हें टीएमसी हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत दी थी। आसाम हुकूमत इस माह की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्व सरमा ने नई मुद्दते कार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असेंबली का खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनाकिद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यकसां सिविल कोड बिल असेंबली इजलास के आखिरी दिन पेश किया जाएगा। इस इकदाम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बन जाएगी।

0: मणिपुर में आज सुबह तकरीबन 10:10 पर नामालूम मुसल्ला अफराद ने 2 बोलेरो गाड़ियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 4 दिगर जख्मी हो गए। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि अमरीका में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट से चुराए गए 3 भारतीय नवादरात की वतन वापसी का मकसद भारत के सकाफती विरसे की हिफाजत है। नई दिल्ली में इन तारीखी नवादरात की वापसी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये कोशिश अजायब घरों में अखलाकी उसूलों को मजबूत बनाने के लिए भारत के अज़्म को जाहिर करती है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए आज बीजिंग पहुंचे हैं। कल शुरू होने वाली अपनी 2 रोजा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त, तिजारत और मसनूई जहानत समेत अहम मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आज गांधीनगर में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 तमगे जीते, जिसमें चांदी और कांसे का एक एक तमगा शामिल है। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलोग्राम स्नैच जुमरे में चांदी का तमगा जीता और फिर मजमूई तौर पर 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने बैंकॉक में मुनाकिदा सिंगल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुतालिक 37,500 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने की भी मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के उदरायाला और दिगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
3: थैंक्स आनंद।
1: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85%

0: प्रतिशत आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
1: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी SPR की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
3: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPR बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि वह हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
0: जी
3: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
0: जी
3: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
0: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
1: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता।

0: प्रक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है, जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
0: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
2: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है, उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग भी विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा। खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं।

0: लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट, एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, चीजें टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा है एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटी को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है, खुले प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing of green strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब कृषि का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती है वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल तक कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया हो जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी

0: फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद ब्लड से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन की तरह है, तो क्यों करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो मिला के संबंध है दुनिया के बड़े देशों से, उनसे डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है। लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रूस की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको बैलेंस रख के चलना है। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक उस पर उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेश में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
1: जी
3: अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको में, खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।

0: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
0: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
0: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से चर्चा का विषय है। आइए अब सुनते हैं नाटक। नाटक का शीर्षक है वनवास का सच।

0: ये कैसी ध्वनियां सुन रहा हूं? अरे हाँ, कुछ कुछ स्मरण आ रहा है। पहले भी मैंने ये ध्वनियां सुनी है। हाँ हाँ, स्मरण आया, ये तो काल पुरुष के आगमन की ध्वनि थी जो मेरे अंतस्थल से प्रकट हुई थी। तो ये उसी काल पुरुष की ध्वनि है।
1: हाँ विश्वामित्र, ठीक ही समझा तुमने, ये काल पुरुष की ध्वनि ही है। आज तुम्हारे द्वार पर मुझे उपस्थित होना पड़ रहा है, तुम्हें झकझोरने की आन पड़ी है विश्वामित्र। आज नहीं उठ रही हैं वे ध्वनियां जो कभी तुम्हारी अंतरात्मा से उठती थी।
0: कुछ कुछ स्मरण कर पा रहा हूं। वर्षों पहले
2: क्यों विश्वामित्र, तुम्हें आर्यावर्त की कुछ सूचना है? आर्यभूमि की क्या दशा है?

0: दक्षिण शांत है? क्या ऋषि मुनि यज्ञ तपस्या ठीक से कर पा रहे हैं?
1: नहीं नहीं, देश का दक्षिणी क्षेत्र अशांत है। आसुरी शक्तियों का तेजी से विकास हो रहा है।
0: तो क्या कुछ कर रहे हो तुम इसके लिए? बड़े प्रतापी सम्राट है ना महाराज दशरथ, पर वे केवल अवध को देखते हैं। अपने ही सुदूर क्षेत्रों, उसे सटे भूभागों, वहां के वनवासियों और जनजातियों की चिंता उन्हें नहीं।
1: इसीलिए तो
0: क्या इसीलिए?
1: मैं महाराज दशरथ से उनके दो तेजस्वी और प्रतापी पुत्रों राम और लक्ष्मण को उनसे मांगने जा रहा हूं, ताकि मैं उन्हें वेद वेदांग और धनुर्विद्या में पारंगत कर उनसे राक्षसों के अबाध प्रसार को रुकवा सकूं।
2: और विश्वामित्र, तुम्हारे इस कार्य से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ था, कई राक्षसों का नाश हुआ था।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, त्रिकालज्ञ हैं आप। आपने ही तो मुझसे ये कार्य कराया, मैं तो बस निमित्त मात्र था।
2: और आज पुनः तुम्हें निमित्त होना है,
1: अर्थात
2: तुम्हें एक बार पुनः राम लक्ष्मण को वन भेजना है।
1: पर युवराज राम तो अयोध्या के राजा होने वाले हैं। सारी तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में
2: ही तुम्हें महाराजा दशरथ को बताना है कि राम केवल अयोध्या की राजगद्दी के लिए नहीं बने हैं। राम की आवश्यकता आज आर्यावर्त के वनवासियों जनजातियों को है।
1: आप ये बातें महाराज दशरथ को क्यों नहीं कहते?
2: तुम परखे हुए पात्र हो विश्वामित्र।
1: पर राजा दशरथ हैं, उनकी रानियां हैं, कुल गुरु कुल पुरोहित सभी हैं।
2: हाँ है विश्वामित्र, पर
1: तनिक सोचिए काल पुरुष, एक बार मैंने राजा दशरथ से उनके पुत्र मांग लिए, पर क्या किसी याचक का बार बार याचना करना उचित है?
2: तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया विश्वामित्र, अब मुझे कोई दूसरा द्वार खटखटाना ही होगा। सोचो काल पुरुष, सोचो। एक ओर है पूरी अयोध्या और दूसरी ओर तुम अकेले। तो क्या स्वयं महाराज दशरथ के पास जाओगे? नहीं नहीं, मैं अपनी कल्पना में सुन पा रहा हूं महाराज दशरथ की कातर वाणी। सुन

0: देवता, ये कैसी मांग रख रहे हैं आप मेरे सामने? आप तो जानते हैं कि मुझे पुत्र वियोग में प्राणांत का श्राप है। ऐसे में राम लक्ष्मण को वन भेजना, मुझे मृत्यु के मुख में धकेलना ही तो है। एक प्रकार से ये बद है मेरा। काल देवता, निर्मम, निष्ठुर, असामयिक वध, क्या आप ऐसा कर सकते हैं?
1: नहीं नहीं, सीधे राजा दशरथ के पास जाना उचित नहीं होगा, पर कुछ तो करना ही होगा।
0: करता हूं कुछ।

आधी रात होने को है, महाराज अभी तक नहीं आए और ऊपर से ये विकट ध्वनियां।

0: क्या प्रयोजन है इनका?
1: प्रयोजन है महारानी केकई, मैं काल पुरुष आपका अभिवादन करता हूँ।
0: तो आप हैं कालदेव?
1: जी महारानी।
0: पर इस समय मेरी कक्ष में?
1: महारानी, असमय में आने के लिए क्षमा चाहता, पर क्या करूं, अतिशीघ्र होने वाली एक घटना को मुझे रोकना है आपकी सहायता से।
0: कौन सी घटना, कैसी सहायता?
1: महारानी, कल की घटना। और
0: कल? कल तो राम का राज्याभिषेक है।
1: मेरा संकेत उसी ओर है महारानी।
0: क्या? तो क्या आप राज्याभिषेक रोकना चाहते हैं?
1: जी महारानी।
0: कैसी अनर्गल बात है?
1: महारानी, सिर्फ रोकना ही नहीं, राम को वन भी भेजना है।
0: कालदेव, क्या कह रहे हैं आप?
1: महारानी, मैं काल पुरुष हूँ, मेरे कंधों पर ही ये भार रहता है कि मैं लक्षित में छिपे अलक्षित को पहचानूं और जो सर्व मंगलकारी और कल्याणकारी है उसे घटित करूं।
0: ऐसी दुर्घटना में भला किसका कल्याण छिपा है?
1: समस्त आर्यावर्त का महारानी।
0: कैसे?
1: महारानी, अवध और अयोध्या तो पूरी तरह संपन्न और सुरक्षित हैं, पर देश के सुदूर प्रांत सीमांत अंचल कितने अशांत और असुरक्षित हैं। युवराज राम राज्य करने नहीं, वनवासियों, पिछड़ों और असहायों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं।
0: पर पुत्र राम और लक्ष्मण ने तो ये दायित्व बहुत छोटी आयु से ही पूरा किया है, जब विश्वामित्र उन्हें आश्रम ले गए थे।
1: पर अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है महारानी, क्या आप नहीं जानती कि लंकापति रावण आज अधिक दुष्ट हो गया है? अपनी सोने की लंका को सुरक्षित मानकर वो अब आपके साम्राज्य में सीमांत भूभागों में घुसपैठ कर रहा है, और उधर किष्किंधा का दंभी और घोर अनाचारी शासक बाली देश के लिए एक अतिरिक्त संकट है, दुष्ट रावण से उसका गठजोड़ है।
0: कालदेव, आपने तो भविष्य का बड़ा भयावह चित्र उपस्थित किया है।
1: और यही सच है महारानी।
0: तब आप दीदी कौशल्या और दीदी सुमित्रा को ये दायित्व क्यों नहीं देते?
1: मैं उन दोनों के पास गया था महारानी, पर सुनिए महारानी कौशल्या ने क्या कहा।
2: कालदेव, आपकी बातों से एक दूसरा पहलू उभर कर अवश्य सामने आता है, पर राज्यारोहण की बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब कुछ करना कठिन लगता है, और वैसे भी अब हमारे वानप्रस्थ का समय है, राज्यारोहण शुभ शुभ संपन्न हो जाए तो मैं और महाराज दोनों ही अपने को मुक्त अनुभव करेंगे। कालदेव, क्षमा करें कालदेव, क्षमा करें। और फिर आप सुमित्रा के पास क्यों नहीं जाते? वो केवल नाम की सुमित्रा नहीं, स्वभाव और व्यवहार से भी सुमित्रा है, आप उसी के पास जाइए, हो सकता है वही कुछ करे।
0: तो फिर आप दीदी सुमित्रा के पास क्यों नहीं गए?
1: गया था देवी, उनका भी उत्तर सुन लीजिए।
3: असंभव भूमिकाओं में अवतरित होना मेरी क्षमता से परे है कालदेव, ये कार्य तो मेरी छोटी बहन कैकेयी ही संपन्न कर सकती है। ऐसे कार्यों के लिए जो साहस, योग्यता और तत्परता चाहिए वो महारानी कैकेयी में है। वे ही देवासुर संग्राम में महाराज के साथ गई थी, वो कुछ तय कर लेती हैं तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कालदेव, आप उन्हीं के पास जाएं।
0: सब ने मुझे अग्रसर होने को विवश कर दिया है। कालदेव,

0: जी महारानी,
1: सिर्फ राज्याभिषेक स्थगित करना तो समस्या का हल नहीं है।
0: जी नहीं,
1: जिस बड़ी भूमिका का उल्लेख आप कर रहे हैं इसके लिए तो पुत्र राम को वन जाना ही होगा।
0: निश्चय ही।
1: हाँ, उन्हें वन वासियों के बीच उन्हीं की जीवन शैली अपनाते हुए एक निश्चित समय तक रहना ही होगा।
0: जी महारानी,
1: रावण की घुसपैठ को रोकना है, किष्किंधा का विस्फोटक गढ़ तोड़ना है, दुष्टों और दंभियों को उसके घर में घुसकर नष्ट करना है।
0: हाँ महारानी, हाँ, आप तो मुझसे अधिक जानती हैं, अधिक सोचती हैं। आपने तो मेरा कार्य सरल कर दिया है। अब मुझे विश्वास है कि मेरी योजना सफल होगी, अवश्य सफल होगी। अच्छा महारानी, प्रणाम।
1: आइए महाराज, आइए। कैकेयी के स्नेह सदन में आपका स्वागत है।
2: देवी, आज मैं पुनः विलंब से आया हूँ।
1: कोई बात नहीं है महाराज, ये तो स्वाभाविक है। आप आ जाते हैं, यही क्या कम है?
2: लगता है महारानी कुछ अस्थिर हैं। क्या बात है देवी? देवी कैकेयी, आप शायद कुछ कहना चाहती हैं।
1: महाराज, पता नहीं क्यों आज मुझे उलझन सी हो रही है। कल युवराज राम का राज्याभिषेक है और आज।
2: और आज? आज क्या महारानी?
1: महाराज, हमें क्या केवल वर्तमान में ही जीना चाहिए? क्या विस्तृत दृष्टि से भविष्य का भी आकलन करना हमारा धर्म नहीं?
2: मैं आपका आशय समझा नहीं देवी।
1: महाराज, आयुष्मान राम रघुकुल में विशिष्ट हैं। उनकी छवि इतिहास में भविष्य में दूर तक जाने वाली है।
2: हाँ अवश्य।
1: पर पुत्र राम के साथ बहुत अन्याय होने जा रहा है।
2: अन्याय? और राम के साथ कौन कर रहा है ये अन्याय और कैसे?
1: हम सभी।
2: हम सभी?
1: हाँ, क्या राम का राज्याभिषेक कर उन्हें अवध और अयोध्या तक ही सीमित नहीं किया जा रहा है? क्या वे भी रघुकुल के अन्य शासकों की तरह एक सामान्य शासक होकर नहीं रह जाएंगे? क्या राज्याभिषेक की मोहक शब्दावली और राजकीय समारोह की शोभा और अनुष्ठान द्वारा उन्हें सीमित नहीं किया जा रहा?
2: तो आप क्या चाहती हैं? राम का राज्याभिषेक न हो? ऐसा संभव है महारानी? अवश्य आपके किसी ने कान भरे हैं।
1: महाराज, क्या आपने अपनी कैकेयी को यही समझा है? क्या मैं इतनी दुर्बल चित्त हूँ कि कोई भी मुझे प्रभावित कर दे? महाराज, मेरी बात ध्यान से सुनिए।
2: बोलिए महारानी, बोलिए।
1: मेरे विचार से किसी युवराज को गद्दी पर बैठने से पहले अपने राज्य की व्यापक परिक्रमा करनी चाहिए, गहन देशाटन करना चाहिए। ऐसा करके ही वे राज्य में विलग पड़ी प्रजा को, उसके सुख दुख को, उसकी समस्याओं को ठीक ठीक जान सकते हैं और तभी राज सत्ता प्राप्त करने पर वे उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। क्या पुत्र राम के लिए भी ये आवश्यक नहीं महाराज?
2: महारानी कैकेयी, आपकी बातें सारगर्भित हैं और विचारणीय भी, पर इनसे सहमत हो पाना मेरे लिए संभव नहीं दिखता। मैं विवश हूँ महारानी, मैं विवश हूँ।
1: मोह के कारण विवश हो जाना महाराज दशरथ को शोभा नहीं देता। इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ

0: के हर निवर्तमान राजा का कर्तव्य होता है कि वे भावी सम्राट को ऐसा प्रशिक्षित करें कि वो जन जन का हो सके। हमारा राम न सिर्फ नागर जनों का बल्कि कोल, भील, निषाद का, चित्रकूट का, किष्किंधा का, पंचवटी का प्रिय राजा राम होगा।
1: महारानी, आपकी बातों ने तो जैसे मुझे नई दृष्टि दी, पर क्या ये संभव है? एक ओर है राज्याभिषेक और दूसरी ओर देशाटन, वन प्रांतों का भ्रमण, वो भी मेरे राम के द्वारा। महारानी, मैं व्याकुल हो रहा हूं। महारानी, मैं व्याकुल हो रहा हूं। और फिर क्या स्वयं राम को ये अनुचित और अन्याय न लगेगा?
0: महाराज, राम अत्यंत विचारवान हैं और आज राम भी राज्याभिषेक के आयोजन की जगह उसके स्थगन की सोच रहे हैं। निषाद राज, शबरी, जटायु, नल नील सब उनसे मिल चुके हैं और अपनी व्यथा कथा कह चुके हैं। आप जानना चाहेंगे कि राम की इस समय क्या स्थिति है? तो लीजिए काल की दिव्य दृष्टि और देखिए राम की दशा।
2: क्या होने जा रहा है कल? युवराज राम, तुम पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से, क्या ये तुम्हारे राज्याभिषेक का सही समय है? रात्रि के सन्नाटे में एक और निषाद राज, शबरी, जटायु, नल नील कहकर कातरता और अनुनय विनय के साथ तथ्यों का रखना, दूसरी ओर मानव रूप धर कर चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा का मिलना तुम्हें कितने ही कर्तव्यों का स्मरण करा रही है। निषाद राज और शबरी का अपने राम के प्रति प्रेम कितना निष्कपट है। गंगा तट पर बसने वाले निषाद, वनों में रहने वाले भील भी तो तुम्हारे प्रजाजन ही हैं। उनके पास तुम्हें जाना ही चाहिए राम। क्या तुम राजपाट में व्यस्त होकर फिर उनके लिए समय निकाल पाओगे? फिर धार, कछार, शिलाएं, नद, निर्जर और वन के बिना तो मानव का अस्तित्व ही नहीं। प्रकृति की महत्ता मनुष्यों में बनी रहे, उसकी सुरक्षा की चिंता हो, इसके लिए चित्रकूट और पंचवटी की यात्रा आवश्यक है। इधर दंभी शासक बाली से आक्रांत किष्किंधा की कातर पुकार है। राजमुकुट, राज सिंहासन और राज के मर्यादाओं के बंधन में तुम ये सब संपन्न नहीं कर सकोगे राम, नहीं कर सकोगे तुम। हाँ, ठीक कहता है मेरा मन। ठीक समय पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे पुकारा है। मुझे अभी जाना होगा पिताश्री के पास, राज्याभिषेक के स्थगन का अनुरोध करना होगा। वे घोषणा करे कि पर क्या ये अमर्यादित नहीं होगा? पिताश्री, माताएं और अयोध्यावासी क्या सोचेंगे कि आज एकाएक क्या हो गया राम को? पर नहीं पिताश्री, नहीं सीते, नहीं अयोध्यावासी, मैं नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता मैं। आज राम निर्णय करने को विवश है। राम निर्णय करने को विवश है।

0: तो पुत्र राम इतनी उद्विग्न और विकल है, पर कितने उदार मना है राम, उन्हें सबकी चिंता है। निषाद राज नल और नील की और तो और पंचवटी और चित्रकूट तक की भी।
1: हाँ, और त्याग की तो वे मानो प्रतिमूर्ति हैं। कर्तव्य की वेदी पर वे सारा सुख सारा वैभव निछावर कर देने को तत्पर हैं।
0: सचमुच सचमुच पुत्र की इस कर्तव्य परायणता पर, समस्त आर्यावर्त के प्रति उनके समर्पण पर पिता की भी भूमिका होनी ही चाहिए।
1: हाँ महाराज, हमें चाहिए कि पारिवारिक और राजकीय निर्णय को ठुकराते हुए एक पक्षीय निर्णय का आक्षेप हम राम पर न लगने दें। ये निर्णय समस्त अयोध्या का राजकीय और पारिवारिक निर्णय हो।
0: पर ये कैसे संभव है?
1: महाराज, आप अपने सभासदों कुलगुरु और पुरोहितों की आपात बैठक आहूत कीजिए। उनके सामने अपना मन अपना अंतर्द्वंद रखिए। आर्यावर्त की दशा की विस्तृत चर्चा कीजिए। राम लक्ष्मण दीदी कौशल्या दीदी सुमित्रा सबका सहयोग लीजिए।
0: क्या वे मान जाएंगे?
1: आप कैसे मान गए, मैं कैसे मान गई? महाराज, हर मनुष्य में एक दूरदर्शी विवेकशील मनुष्य भी छिपा बैठा होता है। हम अपने स्वार्थों और माया मोह से घिरे होने के कारण उसकी ओर देख नहीं पाते, उस पर ध्यान नहीं दे पाते, पर अवसर आने पर वो विवेक सजग हो उठता है और तब व्यक्ति कालातीत निर्णय लेने में समर्थ होता है।
0: ठीक है देवी कैकेयी, ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं अभी राज की ये घोषणा करता हूं, पर क्या मैं राम का वियोग सह पाऊंगा?
1: ये वियोग कहां है महाराज? राम तो एक निश्चित अवधि के लिए प्रवास लेंगे और समस्त दायित्वों का निर्वाह कर दुष्टों राक्षसों और अत्याचारियों का वध कर वे आर्यावर्त को कष्ट विहीन करेंगे और पुनः राजगद्दी पर आसीन होंगे। तब होगा उनका राज्याभिषेक।
0: हाँ महारानी, हाँ, मैं वियोग के दुख से वंचित हो जाऊंगा। यंत्रणादायक मृत्यु की पदचाप नहीं सुनूंगा। मुझे प्रतीक्षा होगी राम के लौटने की। अस्थगित राज्याभिषेक को दूने उत्साह के साथ संपन्न करने की मुझे प्रतीक्षा रहेगी महारानी, मुझे प्रतीक्षा रहेगी।

तूने उत्साह के साथ होगा राम का राज्याभिषेक और हो सकेगा समस्त आर्यावर्त का कल्याण। काल का यही तो दायित्व है और यही है कार्य प्रणाली। ऐसी घटनाएं घटित करनी पड़ती हैं जो बाहर से अप्रिय लगती हैं, पर लोग नहीं जानते कि उनके अंदर छिपा होता है वृहत कल्याण, समस्त का कल्याण, समग्र का कल्याण। तो तुम प्रसन्न हो ना काल पुरुष, समस्त आर्यावर्त के कल्याण की योजना बनाकर उस

समय वनवास का सच किसे माने पता नहीं, पर काल पुरुष की योजना ही है वनवास का सच। काल पुरुष की योजना है वनवास का सच।

आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। गितार पर राग वागेश्वरी में अलापर्गत, मध्य लय की रचना झप ताल में व ध्रुव लय की रचना तीन ताल में निबंध है। कलाकार है पंडित विश्वमोहन भट्ट।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कलाकार थे पंडित विश्वमोहन भट्ट। ये आकाशवाणी का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक

0: से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad-Sarkhej-Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. CBI has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurgaon, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers